एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 16, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 6 तारीख प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसका अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट

0: बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चर जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम समर्पण में। ये पहली प्रस्तुति है सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम अभिवरण। 7:45 बजे सुनिएगा सुगम संगीत, 7 बजे जोहार चाईबासा, 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होता है, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार, 8:40 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी की महक। इस दैनिक कार्यक्रम के बाद अभिविधा कार्यक्रम पूर्वान्ह 9 बजे से।

रस रंजन कार्यक्रम होगा 9:30 बजे, 10 बजे फिल्म संगीत, 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे। शाम 5:05 पर सिकंदर से होगा गुलदस्ता कार्यक्रम।

5:30 बजे आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 6 बजे मुख्य समाचार, 6:02 पर बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 बजे आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा। 7 बजे प्रादेशिक समाचार होते हैं, उसके बाद जिले में आजकल। सात बजकर 10 मिनट पर विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति विशेषज्ञ मनसुख मंडाविया, युवा मामले और खेल मंत्री, जिसकी अवधि होगी 35 मिनट।

8:45 कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम, 8:45 समाचार संध्या का प्रसारण होता है और 9 बजे इंग्लिश न्यूज़। सवा 9 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे। 10 बजे इस केंद्र से गजलों का कार्यक्रम होगा महफिल। 10:30 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरों के रंग में। 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज़। और आज की हमारी सभा संपन्न होगी 11:11 पर। तो ये था आज का कार्यक्रम विवरण।

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
1: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
1: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।
2: सुगम संगीत पेश खिदमत है आज का ये कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम का आगाज फिल्म बलमा के इस नगमे से, आवाज़ें आशा भोसले और कुमार सानू की।

दोस्तों, आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष 2026 में भारतीय जनसंचार की आवाज़ का सफ़र है आकाशवाणी। भारत में जनसंचार के इतिहास में आकाशवाणी का नाम ऐसी संस्था के रूप में दर्ज है जिसने देश की आवाज़ को गांव-गांव, शहर-शहर और सीमाओं के पार तक पहुंचाया। वर्ष 2026 में आकाशवाणी अपनी स्थापना के लगभग 90 वर्ष पूरे कर रही है। यह केवल एक प्रसारण संस्था का उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक यात्रा का भी उत्सव है। तो आप सभी तमाम सामईन इसमें शरीक हैं। आपकी नज़र कार्यक्रम का अगला नगमा।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना मुख धरा रे नाका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर आ को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: नितुम बुरम सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार फिर कलो पुलिस कलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर रंग गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अली आया न तुम तेरी ना आप ही लेते ना
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्र

0: उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

कार्यक्रम जोहार चाईबासा में अभी आप सुन रहे हैं चंद देशभक्ति के जज्बे से लबरेज नगमे।

इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ जाता है आज का कार्यक्रम जोहार चाईवासा। हम आकाशवाणी चाईवासा से बोल रहे हैं एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: बिल 0 हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूल से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
4: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों

0: को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
7: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की

0: की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan's Cripps history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
3: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
4: दुनिया अब हरित युग की तरफ ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है. भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था.
3: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
5: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
3: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aimed to promote

0: rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Kerala. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: Meanwhile, the weather agency predicted a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Kukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being financial year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds, to draw funds, prop rupee, government scraps FII capital gains withholding tax on bonds. While the Financial Express reports, economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops GoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9. And Indian Grandmaster R. Pragyanand scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। रांची में आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष मतदाता शिविर, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। देश में मॉनसून के दस्तक देते ही झारखंड में बदला मौसम, रांची समेत कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष टीम, झारखंड के आशीष तनीपूर्ति की शानदार हैट्रिक से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज अपने दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अपने प्रवास के दौरान वे रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठकों में भाग लेकर आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। झामुमो द्वारा राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद रांची में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के राजू की मौजूदगी में विधायकों ने आपसी एकजुटता का संकल्प लिया। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि संगठन को गठबंधन को मजबूत रखने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मतभेद दूर किए जाएंगे।
5: सीएलपी की बैठक, विधायक दल की बैठक हुई है और पहले हमने अपने पार्टी द्वारा चयनित उम्मीदवार का स्वागत किया है और थोड़ी बहुत बात जो गठबंधन में दूरी दिख रही है, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि गठबंधन दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं उनसे समय लेकर के यह जो आपस की दूरी बढ़ी है, यह दूरी भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा देगा। हम सबको इस दूरी को पाटना चाहिए।
4: इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि पार्टी ने कांग्रेस के साथ हमेशा एक तरफा प्यार निभाया है। उन्होंने दोनों राज्यसभा सीटों पर झामुमो का हक जताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी।
6: इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे। कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी लेकिन हमने चार मंत्री बना के रखा, आज भी यथास्थित, लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला।
4: रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए प्रत्याशी जल्द घोषित होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के विवाद के बीच भाजपा ने आंकड़ों की कमजोरी के बावजूद अपनी जीत का दावा किया है
7: कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव में जो निर्णय हुआ है कि प्रत्याशी दे रही है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और मुझे लगता है कि आज देर रात या कल सुबह तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हमारे प्रत्याशी घोषणा होते साथ माननीय सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक साथ नॉमिनेशन में उसमें हम लोग करेंगे।
4: झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नई इनाम योजना की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और उत्पादन की सूचना देने वाले आम लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इसके दुष्परिणामों से बचाना और समाज में नशीले पदार्थों की मांग को कम करना है। रांची में नशे के खिलाफ दो दिवसीय विशेष मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीआईपी और रिनपास के विशेषज्ञों ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। विशेषज्ञों ने कहा कि तनाव और सामाजिक समस्याओं के कारण युवा भटक रहे हैं, लेकिन सही काउंसलिंग और उपचार से नशा मुक्ति संभव है। रांची जिला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों ने नगड़ी क्षेत्र के एक कारोबारी से वर्चुअल कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। एएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तुपोदाना क्षेत्र से दोनों को धर दबोचा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला में तीन जिलों के जनजातीय मामलों की सुनवाई की। उन्होंने गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा से जुड़े भूमि विवाद और शिक्षा जैसे 16 मामलों की समीक्षा की। बैठक के बाद डॉ. लकड़ा ने बताया कि अधिकारियों को जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
8: जिला का लगभग 16 के जुमला लोहरदगा और सिमडेगा जिला मिलाकर के लगभग 16 केसों का सुनवाई की है और उसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो प्राय केस जमीन से रिलेटेड थे, एजुकेशन से थे और जाति के माध्यम से थे। ऐसे अगर देखा जाए तो जमीन से रिलेटेड थे।
4: रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता के लिए राजनीतिक दलों से सक्रिय भागीदारी और बीएलओ से समन्वय का आग्रह किया। गिरिडीह में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान को लेकर जिला प्रशासन और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जिला उप निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने पीरटांड में बीएलओ के साथ बैठक कर मैपिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए।
9: ब्लॉक में बीएलओ एवं सुपरवाइजर बैठक किया। इस बैठक के दौरान कुछ खामियां पाई गई, साथ ही मैपिंग भी यहां पे कमी है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां 70% कम मैपिंग हुई है। उसको हम हिदायत दिए हैं कि अभिलंब जो आप मैपिंग को बढ़ाएं, साथ ही एंटी केसी बहुत ज्यादा मिल रहा है। उस संदर्भ में डॉक्यूमेंट कलेक्शन की भी लोगों को बात कही है और बीएलओ इसमें त्वरित रूप से काम करने का निर्देश है।
4: वहीं भाजपा और झामुमो कार्यकर्ता भी मतदाताओं की मैपिंग के लिए अभियान चलाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची में पर्यावरण संरक्षण की धूम रही। झारखंड जैगुआर ने टेंडर ग्राम में आईजी अनूप बिरथरे की अगुवाई में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण दूत बनने का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। मौसम। देश में मॉनसून के आगमन के बाद झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची तथा आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है जो मॉनसून के आगे बढ़ने के अनुकूल है। जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में झारखंड के आशीष तनीपूर्ति ने अंतिम क्वार्टर में शानदार हैट्रिक लगाकर भारत को जीत दिलाई। वहीं महिला टीम पेनाल्टी शूटआउट में चीन से हारकर बाहर हो गई। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में राज्यसभा चुनाव में उत्पन्न सीट विवाद की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्यसभा चुनाव में रार, झामुमो बोला एक तरफा प्यार कब तक, दोनों सीटों पर ठोका दावा। प्रभात खबर के शब्द हैं, नहीं रुक रहा प्रिंस खान की धमकियों का सिलसिला, रांची में दो बड़े कारोबारियों के बाद अब चंद्रगुप्त परियोजना के अधिकारी से मांगी रंगदारी। हिंदुस्तान ने लिखा है, बोकारो के नीलकंठ विश्व बैंक में भारत के ईडी बने। दैनिक जागरण लिखता है, बाइक खरीदवाने की जिद में युवक चढ़ा टावर पर, चार राज्यों की बिजली रही ठप। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से दो दिवसीय झारखंड दौरे पर, रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। रांची में आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष मतदाता शिविर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। देश में मॉनसून के दस्तक देते ही झारखंड में बदला मौसम। रांची समेत कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष टीम, झारखंड के आशीष तनीपूर्ति की शानदार हैट्रिक से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
2: संदेश से पूर्व सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची का, ये केंद्र है 540.45 मीटर यानी 5।
3: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी की महक। इसमें आज आइए सुनते हैं संथाली गीत, कलाकार हैं मनोहर महतो और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माटी की महक। हम FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: सभी श्रोताओं को आशा पिंगुआ का नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। भारतीय एवं विश्व इतिहास में 6 जून को 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी राजे भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिमी भारत में हिंदवी स्वराज या मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में शामिल है भेंटवार्ता का। आप सभी मिलेंगे गीता हेमरम से, जो बताएंगी स्काउट गाइड के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
1: जोहर, मेरा नाम गीता हेमरम है और मैं तांबो चेवासा से हूँ। जी,
0: और अभी क्या कर रही हैं आप?
1: अभी फिलहाल मैं घर पे बिजनेस कर रही हूँ। जी,
0: और जिस समय आप सुना है कि आपने स्काउट गाइड में भी थे,
1: जी,
0: तो ये स्काउट गाइड क्या होता है?
1: स्काउट गाइड एक संस्था है, पूरे भारतवर्ष में चलता है।
0: अच्छा,
1: तो इसमें क्या है कि आप जैसे हम लोग होता है कि बच्चों को नर्सरी में जाके कुछ लोगों के साथ जुड़ करके काम करना, या फिर लोगों के साथ वो लोग किस तरह से आदान प्रदान करते हैं खुद को, वो चीज सिखाया जाता। तो स्काउट गाइड भी एक ऐसा संस्था है जिसमें 0 एज से लेकर के, मतलब 3 साल 5 साल से लोग आते हैं,

0: उसका भी एक स्टेज होता है, जैसे 5 साल से, 3 साल से 5 साल तक को बनी बोलते हैं, 5 साल से 10 साल को कब बुलबुल बोलते हैं, फिर 15 साल से लेके 16 साल, 10 से लेके 15 तक को वो स्काउट गाइड बोलते हैं, फिर 15 से लेके 25 साल को रोबर रेंजर।
1: अच्छा,
0: जी
1: ये सीरियल भाई आप हमको विस्तार से बताइएगा, लेकिन
0: जी
1: सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, और बचपन से लेकर के कॉलेज तक।
0: पढ़ाई मेरा शुरुआती स्कूल कारमेल स्कूल था चक्रधरपुर
1: अच्छा।
0: जी, वहाँ पे मैं 5th क्लास तक पढ़ी, उसके फिर बाद में इधर चेवासा आई, SPG स्कूल, SPG बालिका
1: अच्छा।
0: उच्च
1: हाँ।
0: विद्यालय, उसके फिर बाद में प्लस टू रुंटा से की हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा टाटा कॉलेज से हुआ है
1: अच्छा।
0: और PG मेरा कोल्हान यूनिवर्सिटी से हुआ है। जी
1: तो इस संस्था से आप कैसे जुड़े?
0: जब मैं कारमेल में थी तो वहाँ पे हॉस्टल में जब भी छुट्टी होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे छुट्टी के ये पे ही स्काउट गाइड का जो एक्टिविटी है, कैंप वगैरह होता था, वन
1: हाँ
0: डे कैंप वगैरह होता था, तो वहाँ पे मैं देखती थी कि हम लोग से जो भी सीनियर लोग, दीदी लोग थी, उन लोग को सिस्टर लोग कैंप क्राफ्ट वगैरह, जैसे कैंप
1: अच्छा।
0: क्राफ्ट का मतलब है कि आप स्टाफ एक बांस का डंडा और एक रस्सी से आप कुछ भी क्राफ्ट बना सकते हैं, जैसे घरेलू इस्तेमाल के लिए
1: अच्छा
0: आप
1: अच्छा हाँ।
0: बैठने के लिए टेबल भी बना सकते हैं, सोने के लिए आप पलंग भी बना सकते
1: बांस
0: हैं,
1: से।
0: हाँ बांस से, तो इस तरह के एक्टिविटी कराया जाता था, तो अच्छा लगता था। इसमें बिना बर्तन के आप खाना बनाना सीखते हैं वहाँ पर, फिर अनुशासन, लोगों के साथ किस तरह से एक कम संसाधन में आप किस तरह से खुद को
1: अच्छा।
0: उस माहौल पर ढाल सकते हैं, अपने जीविका को किस तरह से चला सकते हैं, इसमें एक नियम है,
1: अच्छा।
0: उस नियम के आधार पे यहाँ पे सिखाया जाता है। जी
1: अच्छा, जैसे कि हमको कहीं हम फंस गए हैं जंगल में
0: जी
1: और वहां हमको घर बनाना
0: जी
1: है ना, तो बांस है, लकड़ी है, जंगल का लकड़ी,
0: जी
1: तो अधिकतर लोग ये करते हैं कि बांस खोजते हैं, बांस को बनाते हैं, तो आपने कभी ऐसा काम किया?
0: जी हाँ, हम लोग को जैसे कहीं भी कैंप जाते हैं तो हम लोग को हाइक के लिए
1: अच्छा।
0: आउटसाइड लिया जाता था जंगल में, वो भी आपको नहीं बताया जाए कि इस रास्ते से जाना है, कुछ ऐसे खोज के
1: अच्छा
0: चिन्ह
1: अच्छा
0: होते हैं तो उस आधार पे आपको जाना होता है अनुमान लगा करके कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ साइन दिखेगा, कुछ चिन्ह दिखेगा, इस
1: अच्छा।
0: रास्ते पे जाना है कि नहीं जाना है, ये सब बहुत स्किल मतलब सिखाया जाता है उस ये पे, फिर उस आधार पे आप कहाँ, आप कैंप का जो साइट है वहाँ तक
1: हाँ
0: पहुँचते
1: हाँ
0: हैं, फिर वहाँ पे आपको कुछ चैलेंज दिया जाता है,
1: अच्छा।
0: जैसे कुछ टास्क दिया जाता है, उसमें आप जैसे बर्तन खाना बिना बर्तन के खाना बनाना, फिर कम लकड़ी में आप किस तरह से ये कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ घंटे के लिए आप वहाँ पे रुक रहे हैं तो आपको रुकने के लिए वहाँ पे शेड बनाना होता है,
1: अच्छा।
0: उस तरह से मतलब जो भी है हम लोग घरेलू घर पे जो इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से, मतलब पूरी तरह से तो घर घर में तो हम लोग खरीद के फर्नीचर लाते हैं, लेकिन
1: हाँ
0: वहाँ पे
1: हाँ
0: क्या है कि आप
1: खुद बनाना होता
0: सुविधा,
1: है।
0: अपने सुविधा के लिए आपको
1: जी हाँ।
0: वो तैयार करना होता है।
1: जैसे कि आप कहीं गए, घर तो बन गया,
0: जी
1: मतलब कि वो चार लकड़ी डाल करके आप पत्ता बिछा करके छत बना ली,
0: जी
1: लेकिन अगर हमको खाना बनाना है बिना
0: जी
1: बर्तन का, तो वो हम कैसे करेंगे?
0: जैसे जंगल में अगर आप, आपके यहाँ रोटी बनाने का आटा होगा तो
1: हाँ हाँ हाँ
0: आप नीचे आग जला के पत्थर, पतला पत्थर या कुछ भी
1: अच्छा
0: आप
1: अच्छा हाँ
0: उसमें भी
1: हाँ
0: सेक सकते हैं,
1: हाँ हाँ
0: या तो
1: हाँ
0: फिर लिट्टी लिट्टी वगैरह सब
1: अंगार में,
0: अंगार
1: अंगार
0: में,
1: बनाना
0: जी
1: पड़ेगा
0: उस तरह से
1: हमें।
0: आप ये कर सकते हैं, फिर अगर अंडा आपको उबालना या उसको सिझाना है तो मिट्टी
1: हाँ
0: का लेप लगा के आप उसको आग में डाल
1: हाँ
0: सकते हैं, आलू को भी उसी तरह से चोखा बनाना है तो आप मिट्टी का लेप लगा के आग में डाल दीजिए।
1: जी है। गीता जी,
0: जी
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अंडा को मिट्टी का लेप लगा करके, अगर हमारे पास बर्तन है नहीं
0: जी
1: तो उसको हम आग में डाल सकते
0: जी
1: हैं, और आलू को भी आग में जला करके
0: जी
1: उसका चोखा वगैरह जो भी बनाना हो,
0: जी
1: तो नमक डालने से वैसे ही स्वादिष्ट हो जाता
0: स्वादिष्ट
1: है।
0: जी
1: जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बातें कही। जैसे कि आपने बताया था कि स्काउट गाइड में 6 तरह के या कि 5 तरह के कुछ
0: जी
1: हाँ
0: स्टेज
1: क्या स्टेज होता है, तो वो
0: जी
1: पहला स्टेज क्या है?
0: पहला स्टेज उसको तीन से लेके पांच वर्ष तक के लड़का लड़की दोनों को, तो उनको बनी बोला जाता है। उनका वो क्या है कि हंसते खेलते कुछ भी चीज, मतलब उन लोग को एक माहौल दिया जाता है कि अच्छा। आप वहाँ पे फ्री हो सकते हैं लोगों के साथ, तो उनको बनी बोला जाता है। फिर उसके बाद तीन से लेके दस साल तक के एज वालों को उसको इसका कब बुलबुल बोला जाता
1: अच्छा।
0: है जी। फिर 10 से लेके 15 साल के एज वालों को स्काउट एंड गाइड बोला जाता है।
1: अच्छा, ये कब बुलबुल जो आपने नाम लिया वो क्या है, वो कैसे किया जाता है?
0: कब बुलबुल जैसे लड़कों को कब बोला जाता है और लड़कियों को गाइड
1: बुलबुल
0: बुलबुल बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि कब वो जो सावक होता है, शेर जो बच्चा होता है
1: अच्छा,
0: उसका
1: अच्छा,
0: सावक किस तरह से चंचल होता है, फुर्तीला खेलता है, तो इसलिए उसको कब
1: अच्छा,
0: मतलब छोटा बच्चा कितना फुदकता है खुद ये को, उसमें जानने का कुछ भी इच्छा रहता है जाना, तो इस उसको डिसिप्लिन में लाते हुए उसको किस तरह से स्किल सिखाना है तो वो उस एज में सीखता है।
1: अच्छा।
0: और बुलबुल क्या है कि लड़कियां तो ऐसे भी चहकती रहती है घर में भी
1: है।
0: तो बुलबुल एक पक्षी का ये है कि वो एक डाल से दूसरे डाल पे ये उड़ते रहती है, चहकते रहती है, तो इसी के लिए लड़कियों को बुलबुल कहा जाता
1: अच्छा।
0: है जी।
1: उसके बाद कौन सा स्टेज आता है?
0: उसके बाद स्काउट गाइड का आता है, 10 से लेके 15 साल के एज तक को स्काउट गाइड के ये पे रहते हैं। स्काउट लड़का सेक्शन को होता है और गाइड लड़कियों का होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो स्काउट में भी वही है कि आप बुलबुल से आगे बढ़े, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने जीवन में जैसे दैनिक जीवन में आप क्या क्या कर सकते हैं, घर में आप किस तरह से अपने जो परिजन है उनको सहयोग कर सकते हैं, तो ये एक तरह से जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है।
1: अच्छा,
0: डिसिप्लिन
1: अच्छा।
0: करके डिसिप्लिन रह के जैसे सुबह उठ के एक एक महीना का जैसे हर स्टेज में जाते हैं तो दीक्षा लेना पड़ता है वहाँ पे कि आप इस स्काउट गाइड संस्था में हैं, आप इसमें दीक्षा ले करके आप उस नियम को अपने जीवन में भी पालना करना है और लोगों के साथ रह करके भी उस चीज को पालना करना है
1: जी। हाँ, हाँ।
0: जी उसमें क्या होता है कि एक महीना का आपको जो दैनिक कार्य है
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: ड्यूटी वो लिखना पड़ता है और उस चीज को अमल में लाना होता है अपने जीवन में।
1: अच्छा।
0: तो उसमें बच्चों का स्काउट गाइड लोगों को सिखाया जाता है कि एक महीना में आप घर में क्या कर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद अपना बिस्तर खुद समेटना है, ब्रश करना है खुद, फिर उसके बाद नहाना धोना खुद का, कपड़ा किस तरह से आपको रखना है, अपने यूनिफॉर्म किस तरह से क्लीन करना
1: अच्छा,
0: है, वो सब सिखाया जाता है। उसके बाद है लड़कियों का भी सेम रहता है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद है 15 से लेके 25 साल के उम्र में वो एडल्ट होती हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये लोग क्या होता है कि एक लड़की किस तरह से बड़े होने से अपने आप उनका खुद का जिम्मेदारी बढ़ जाता है, तो वो अपने आप को अनुशासन में रह के किस तरह से वो समाज के साथ भी जुड़ करके काम कर सकती है, ये सब सिखाया जाता है। ये इस तरह से क्या है कि आप एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं
1: जी। हाँ,
0: जी आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा, जैसे इसमें घर में भी बहुत कुछ होता है कि हम बच्चों को हर चीज नहीं सिखा पाते, कुछ चीजें बच्चे कहीं और रह के दोस्तों के बीच में सीख सकते हैं या फिर स्कूल में भी सीख सकते हैं, तो इस तरह का है। वहां पर भी जैसे फर्स्ट एड हुआ, फर्स्ट एड के बेसिस पे भी वहां पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, आप अगर आप कहीं गिर गए खेलते खेलते गिर गए हैं तो उस समय में आप अपने आप को तुरंत के लिए बचाव किस तरह से कर सकते हैं ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। अब हम अगर खेलते खेलते गिर गए हैं तुरंत तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं, तो बहुत कुछ है जैसे फर्स्ट एड हुआ, कैंपास हुआ, और फिर बाद में एडवेंचर, जिस तरह से ट्रैकिंग में जाते हैं तो हम लोग को वुडक्राफ्ट साइन वगैरह हुआ, फिर पायोनियरिंग वगैरह सिखाया जाता है, तो ये सब बहुत कुछ है जो इंसान को खुद में सक्षम बनाता है
1: जी। हाँ
0: जी।
1: जैसे कि हम ट्रैकिंग में जा रहे हैं
0: जी,
1: तो उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: ट्रैकिंग में आप चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो भी है चलने के लिए आपको रोड सेफ्टी का आपको ध्यान देना होगा।
1: हाँ हाँ।
0: उसके बाद यहाँ पे कहीं भी आप एक कैंप ये मतलब एक लक्ष्य तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए यहाँ पे नहीं बताया जाएगा कि आपको यहाँ जाना है करके।
1: हाँ,
0: वहाँ पे वुडक्राफ्ट साइन के द्वारा आपको चिन्ह जगह जगह पे रास्ते में
1: अच्छा,
0: कहीं ना कुछ दूरी में आपको रखा जाएगा, वो
1: हाँ,
0: सब आपको देखते देखते जाना है।
1: मतलब एक निशान छोड़ते जाना होगा
0: जी
1: ताकि
0: जी
1: हम उसी रास्ते से लौट सके या कोई भी नए लोग जाए तो
0: उस चीज
1: उसी
0: को
1: रास्ते
0: देखते
1: के देखते ही
0: जी
1: जाए, है ना।
0: जी हाँ
1: यानी बहुत अच्छी अच्छा ट्रेनिंग दी जाती
0: जी
1: है आपको
0: इसमें माइंड एक तरह से बच्चों का विकसित होता
1: हाँ
0: है।
1: हाँ हाँ जी हाँ
0: जी हाँ
1: और इसके अलावे और क्या क्या सिखाया जाता है?
0: जिसमें कंपास रीडिंग हुआ,
1: और कंपास रीडिंग क्या होता है वो?
0: ये जो भी कंपास है जो हमारा
1: हाँ हाँ
0: दिशा सूचक यंत्र
1: अच्छा
0: है,
1: अच्छा हाँ हाँ
0: उस आप कहीं अगर भटक गए हैं जंगल में तो आप किस तरह से
1: फिर
0: उसे ये दिशा का ज्ञान रहने से आप किस तरह से अपने लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। जैसे होता है ना कि कोई कोई लोग जंगल में भटक गए हैं,
1: हाँ हाँ
0: नहीं पता है किस तरह से, तो जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ कंपास है तो आप पहुंच पाएंगे। जैसे प्रकृति का भी बहुत कुछ साइन होता है,
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: सुबह सूरज उगता है पूरब से, तो सूरज के किरण को देख करके भी, और इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है कि अगर उस ये में सूरज अगर ढल चुका है या फिर कोई भी यह होगा मौसम खराब होगा, तो एक होता है कि पेड़ का जो झुकाव है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: अधिकतर वो किस साइड होता है, वो पूरब की साइड ज्यादा होता है, और ये सब साइन की वजह से भी आप पहुंच सकते हैं, दिशा का ज्ञान आपको ये हो सकता है। फिर बाद में अब हम लोग जो मुर्दों को दफनाते हैं उनका भी एक दिशा होता है कि आप उनको किस दिशा में सिर उनका रहता
1: अच्छा
0: है,
1: अच्छा
0: वो
1: हाँ हाँ
0: उस वजह से भी आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। जी
1: मतलब खुद भी खड़े होकर सूरज के में, तो ज्यादातर तो हमें लगता है कि उनका सर जो है वो पूरब की तरफ होना चाहिए
0: नहीं, वो जब
1: तो।
0: दफनाया जाता है तो पश्चिम की
1: अच्छा
0: ओर
1: पश्चिम
0: दक्षिण की ओर उनका
1: दक्षिण
0: सिर
1: की ओर
0: हो,
1: होता है।
0: जी उनका
1: अच्छा
0: पैर उत्तर की ओर होता है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: हाँ लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है वो, हमको
0: जी
1: लगता है कहीं कहीं कुछ अलग दिशा में भी हो जाता है। खैर वो
0: जी
1: कोई बात नहीं, आप
0: जी
1: जो भी दिशा में अगर उन्हें
0: जी
1: दफनाएंगे तो
0: उनका बहुत कुछ है, सिर्फ एक ही ये नहीं है कि
1: हाँ
0: दायरा कि आप इसी को देख करके चलेंगे,
1: जी
0: बहुत कुछ
1: हाँ
0: साइन वगैरह होते हैं।
1: हाँ मतलब कि हमको कहाँ जाना है, अगर हमको पूरब की ओर जाना है या पश्चिम की ओर जाना है तो वहां पर हम खड़ा होकर के तय कर सकते हैं कि हमारा निशाना तो इधर है तो हमें इधर इधर
0: इधर
1: की ओर
0: जाना
1: जाना है।
0: जी।
1: अगर हमारे पास में कोई ऐसा चीज नहीं है तो हम उसी को देख कर अनुमान लगा सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: गीता जी कभी कभी हमने देखा है शहरों में
0: जी
1: कि स्कूल के बच्चे भी ट्रैफिक संभालते हैं।
0: जी जी हाँ इसमें भी सिखाया जाता है, हम लोग का एक कोर्स होता है उसमें एग्जाम देना पड़ता है,
1: हाँ
0: जिसे हर कोई हर स्टेज में अलग अलग एक स्टेप बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग केजी में हम लोग एडमिशन लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप 1 क्लास जाने के लिए एग्जाम देना होता है, 2 क्लास, उस तरह से 10th तक पहुंचने के लिए, बोर्ड तक ये करने के लिए हर स्टेप में एग्जाम देना पड़ता है। तो
1: हाँ
0: इसमें भी है, जैसे रोबो रेंजर में होता है कि आपको पहले प्रवेश लेना होता है, प्रवेश के बाद प्रथम सोपान में जाते हैं, फिर उसके बाद द्वितीय सोपान में जाते हैं, उसके बाद फिर तृतीय सोपान, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति लिखना होता है, उसके बाद फिर जाके राष्ट्रपति आप क्वालिफाई करते हैं एग्जाम। इस तरह से हर हर जैसे कबूल बुल में हुआ, स्काउट गाइड में हुआ, फिर रोबर रेंजर, तीनों स्टेज में एग्जाम लिख के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसमें जैसे प्रथम सोपान में आप हैं, प्रथम सोपान में एक दायरा होता है, नोटिंग लेसिंग से लेकर के फिर कैंप क्राफ्ट को लेकर के जो भी है दिशा ज्ञान बेसिक स्तर पे सिखाया जाता है। उसके बाद फिर वही चीज आप जब अगला स्टेज में जाते हैं तो फिर उस चीज को आपको थोड़ा सा और विस्तार से सिखाया जाता है। जी
1: गीता जी आपने इतनी सारी चीजें की, हाँ
0: जी
1: काफी आगे भी बढ़ा, काफी समय भी लगा मेहनत भी लगा, आप कैसे शुरू किए, कैसे हुआ आपसे?
0: जब मैं कारमेल में थी
1: हाँ
0: वहाँ
1: हाँ
0: पे तो कैंप क्राफ्ट देखती थी, तो बचपन में ही घर में बोलते थे कि मुझे भी, घर वालों को बोलते थे मुझे भी स्काउटिंग करना है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: फिर बोलते थे क्या करेगी स्काउटिंग करके, तो उन लोगों का जो एक्टिविटी होता था मतलब एक बहादुर
1: हाँ
0: की
1: हाँ
0: तरह, जैसे होता है ना कि हम एनसीसी को देखते हैं
1: हाँ हाँ
0: परेड करते हुए, फिर बाद में जो भी फोर्स वाले हैं उनका जो ट्रेनिंग होता है उसी
1: हाँ
0: तरह
1: हाँ
0: से इसमें भी होता है। तो अच्छा लगता था जब 26 जनवरी 15 अगस्त में आप यूनिफॉर्म, लोगों से अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं,
1: जी हाँ
0: परेड करते हैं, डिसिप्लिन में अच्छा लगता है।
1: अच्छा गीता जी, ये बताइए कि स्काउट गाइड और अभी अभी आपने नाम लिया एनसीसी, ये क्या दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है उसके रास्ते?
0: कुछ कुछ अलग है, जैसे परेड तो सिमिलर है सब में, लेकिन स्किल इसमें बहुत कुछ अलग अलग सिखाया जाता है। जैसे स्काउट गाइड में, जहां तक मुझे लगता है कि स्काउट गाइड में जो भी हम लोग का जीवन से

0: जुड़ा हुआ, जो दैनिक इस्तेमाल में या फिर अपने खुद के लिए हम किस तरह से करेंगे उस बेसिस पे इसमें सिखाया जाता है। एक जनरल नॉलेज इंसान को होना चाहिए उस हिसाब से। एनसीसी में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको आर्मी या फिर फोर्स उसके हिसाब से
1: उस
0: आपको
1: हिसाब
0: सिखाया
1: से।
0: जाता है। जी
1: लेकिन ये चीज है गीता जी, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम अपना बचाव, अपना अपने को सुरक्षित करने के लिए ये सब चीज़ हम सीख रहे कर रहे हैं, तो हमें ये भी चीज़ सीखना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई भी विपत्ति आ जाता है कहीं भी,
0: जी
1: तो उन्हें भी हमें हैंडल करने आना
0: जी
1: चाहिए,
0: हाँ जी
1: है कि नहीं?
0: सिखाया जाता है इसमें भी।
1: हाँ
0: जैसे कहीं बिल्डिंग में आग लग गया है तो आपको वहाँ पे रेस्क्यू किस तरह से करना है,
1: हाँ हाँ
0: फिर या फिर सड़क दुर्घटना में किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो
1: हाँ
0: उसको तुरंत बचाव के लिए, उसको थोड़ा कॉन्शियस में लाने के लिए किस तरह से उसको भीड़ कंट्रोल करना या फिर जो भी पीड़ित है उसको
1: हाँ
0: किस
1: हाँ
0: तरह से थोड़ा सा धैर्य देना, ये सब सिखाया जाता है फर्स्ट एड के ये पे, मतलब उस ये में फर्स्ट एड के जो भी ट्रेनिंग होता है उसमें
1: हाँ हाँ
0: सिखाया जाता है।
1: यानी कि बहुत चीज, हर चीज उसमें स्काउट गाइड में सिखाया
0: जी
1: जाता है।
0: अभी पिछले जो ये लॉकडाउन के आसपास में उड़ीसा में बालेश्वर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे
1: अच्छा
0: भी
1: अच्छा
0: हमारे स्काउट गाइड जाके वहाँ पे सर्विस दिए थे,
1: अच्छा हाँ हाँ
0: रेस्क्यू वगैरह किए, खाना देना हुआ। और जैसे हमारा ये कोरोना के टाइम में
1: हाँ हाँ
0: सब कोई
1: हाँ
0: घर से घर के अंदर थे, लेकिन हमारे स्काउट गाइड के जो संस्था से जितने भी बच्चे थे वो लोग जाके घर घर जाके उन लोगों को किस तरह से सुरक्षा, खुद को सुरक्षित रखना है वो सब, और क्या क्या नियम पालन करना है वो सब जाके वो लोग सिखा उनको बता रहे थे, और राशन वितरण करना, खाना देना, ये सब सारा चीज वो लोग सर्विस दिए हैं। जी
1: अच्छा गीता जी, आपने बहुत कुछ सीखा स्काउट गाइड में,
0: जी
1: आपको क्या बेनिफिट मिला?
0: बेनिफिट तो यही
1: हाँ
0: है कि मुझे मतलब एक इंसान को सही रास्ता चुन
1: हाँ
0: अपने लिए चुनने के लिए, और कुछ कुछ ये होता है कि जो भी स्किल मैं सीखी हूँ
1: हाँ हाँ
0: इससे मुझे फायदा ही हुआ है मुझे।
1: और क्या क्या फायदा हुआ जरा खुल करके बताइए।
0: जैसे होता है कि फर्स्ट एड का
1: हाँ
0: नॉलेज है तो
1: हाँ
0: मुझे अपने सेहत के लिए या फिर घर में भी किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो किस तरह से थोड़ा ट्रीटमेंट किया जाए
1: कुछ
0: थोड़ा।
1: सम्मानित भी मिला होगा आपको?
0: जी
1: हाँ
0: हाँ
1: वो चीज़ बताइए।
0: जी इसमें हम लोग का जो स्टेज है उस हिसाब से मैं अभी फिलहाल राष्ट्रपति एग्जाम लिखी हूँ,
1: अच्छा,
0: राष्ट्रपति रेंजर हूँ,
1: हाँ।
0: और उसके बाद भी रेंजर के बाद भी फिर एज ये होने के बाद लीडर ट्रेनिंग लेना होता है, तो मैं फिलहाल एडवांस रेंजर लीडर हूँ।
1: अच्छा
0: जी
1: और आगे जा करके मतलब कि सभी लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: देखिए बच्चों को आप कुछ ना कुछ मतलब जैसे होता है एक्टिविटी
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों को, जैसे कराटे हुआ,
1: हाँ हाँ
0: फिर और भी म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, इस तरह का, साथ में स्काउटिंग हुआ, एनसीसी हुआ, फिर स्पोर्ट्स हुआ, कुछ ना कुछ में आप बच्चों को लिप्त रखिए ताकि वो गलत रास्ते पे ना जा
1: जी
0: सके।
1: हाँ
0: वो उनका एक मतलब धीरे धीरे करके, बच्चे क्या होते हैं कि छोटे से आजकल तो सब बचपन से ही मोबाइल पकड़ने का आदी हो गए हैं लोग, तो इसमें आप क्या है कि एक्टिविटी में आप बच्चे को जोड़ के रखेंगे तो थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनेगा
1: जी
0: और
1: हाँ
0: उसका टाइम भी उन लोग खुद में अनुशासन जो वो अपने लाइफ में वो लोग लाएंगे वो सारे उससे सीखेंगे वो लोग बच्चे, कहीं भी स्पोर्ट्स में लगे रहेंगे तो।
1: जी हाँ
0: जी
1: एक और विपत्ति है हमारे युवाओं में जो कि नशा पान।
0: जी
1: हाँ कुछ संदेश दीजिए आप।
0: देखिए कभी भी हम लोग को कोई नहीं बताता कि हाँ ये सही है नहीं है,
1: हाँ
0: हम लोग
1: हाँ
0: धीरे धीरे करके जैसे होता है कि बचपन में तो ठीक है माँ बाप के शरण में है तो हम लोग क्या सही नहीं जो भी हम लोग अपने माहौल में जो हो रहा है हम लोग उसको देख करके सीखते हैं।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: आजकल क्या है कि युवाओं के पास हर किसी के यहाँ मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में क्या है कि कुछ हम लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल भी करते हैं कुछ गलत इस्तेमाल भी करते हैं,
1: हाँ
0: तो खुद में होना चाहिए कि हम किस रास्ते पे हमको जाना
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: जी गलत रास्ते पे चलेंगे वो हमारे सेहत के लिए है, खुद के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है, तो नशा पान मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप उससे क्या है कि एक हमको जब जीवन मिला है तो जीवन में हमको अच्छा करने के लिए हम उसको इस्तेमाल में लाएं
1: जी
0: खुद
1: हाँ
0: का जीवन को, क्योंकि हर किसी का जीवन

0: आज हम जानकारी ले रहे हैं विशेष लोक अदालत के माध्यम से समाधान समारोह 2026 पर, और इस पर जानकारी लेने के लिए हम हैं ढालसा के सेक्रेटरी रवि चौधरी जी के पास। तो सबसे पहले नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये समाधान समारोह 2026 है क्या?
1: मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम समाधान समारोह 2026 दिया गया है। यह समाधान समारोह न्याय को सरल एवं सुलभ तरीके से घर घर तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से इसका प्रारंभ किया गया है, जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगी। विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 तथा 23 अगस्त को होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले शामिल किए जाएंगे। विशेष लोक अदालत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकार समिति स्थित मध्यस्थता केंद्र में किया जाएगा। इस सुलह वार्ता का आयोजन 21 अप्रैल 2026 को समाधान समारोह के आरंभ के साथ ही किया जा चुका है। इस समाधान समारोह के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन कराना है।
0: मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो है समाधान समारोह 2026, इसमें किन किन मामलों को हम शामिल करते हैं?
1: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, आपराधिक सुलहनीय मामले, श्रम संबंधी विवाद तथा ऐसे मामले जो आपसी सहमति से इसका निष्पादन किया जा सकता है, उन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।
0: किसी मामले को हम विशेष लोक अदालत में कैसे शामिल किए?
1: देखिए, अगर किसी का अगर ऐसा मामला है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो इसके लिए एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे भर करके वह आवेदन दाखिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल है। गूगल फॉर्म का जो वेबसाइट है वो https://www.sci.gov.in है। तो इस तरीके से इस वेबसाइट पर जा करके और गूगल फॉर्म की मदद से जो है इसको भर करके अपने आवेदन को उसमें दिया जा सकता है कि उनका मामला भी इस विशेष लोक अदालत में चयनित किया जाए।
0: तो ऐसे मामले जो हैं तो दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए कि?
1: जी बिल्कुल, इसमें दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता है। अगर वो आवेदन वहाँ पर देते हैं तो उसके लिए फिर जो भी कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से वो मामला चला है वहाँ पर जाएगा और उनसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाएगा कि वो लोग

0: और कोशिश किया जाएगा कि सुलह समझौता के आधार पर उनका मामले का निष्पादन किया जा सके।
1: तो ऐसे मामले जब सुलह के लिए बैठकी होगी तो ऐसे में दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है।
0: हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि वैसे कोई ऐसा कोई भी मामला होता है तो इसमें जो भी संबंधित पक्षकार हैं या उनके अधिवक्तागण हैं वो वर्चुअल माध्यम से या फिर फिजिकली दोनों तरीके से वो जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए लिंक बनाई गई है, जैसे ही उन लोगों का कंसेंट आ जाता है उनको लिंक दे दिया जाता है, वो जहां से है वहीं से अपने मामले में वर्चुअली भी जो है अपीयर हो सकते हैं।
1: लोक अदालत पूर्व सुलह चर्चा के दौरान क्या होगा?
0: इसमें जो है दोनों पक्षों को बैठा करके दोनों के ग्रीवांसेस को सुना जाएगा कि दोनों के क्या ग्रीवांसेस हैं और उनको उनके लिए जो मीडिएटर अपॉइंट किए गए हैं वो उन लोगों को उनके मुकदमे से संबंधित बातों और तथ्यों को सुनने के पश्चात दोनों को एक पॉइंट पर ला करके कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेंगे कि वो लोग आपसी सहमति से उस मामले को सुलह समझौता के आधार पर समाप्त करें ताकि उनका विवाद जो है समाप्त हो जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
1: अगर कोई पक्षकार जो है वो चाहता है कि उनके साथ उनके अधिवक्ता भी हों तो क्या वो शामिल हो सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, वह अपने अधिवक्ता के साथ फिजिकली भी अपीयर हो सकते हैं या उनके अधिवक्ता वर्चुअल माध्यम से अलग से भी जुड़ सकते हैं, उनको जुड़ने की पूरी छूट है इसमें।
1: एक बात और हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए सहायता या जानकारी के लिए किससे संपर्क किया जा सकता है?
0: इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टोल फ्री नंबर्स जारी किए हैं, जैसे 011-23-11-6464, 011-23-11-6465। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के कार्यालय में आकर के आप अपने मैटर्स के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको आवेदन करने में दिक्कत है तो आप आकर के यहाँ पर से भी अपना आवेदन भरवा सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
1: विशेष लोक अदालत के तहत ये जो समाधान समारोह 2026 का आयोजन हो रहा है, इसके लिए आप हमारे श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अगर वैसे कोई मामले जो कि सुलहनीय है और जैसा मैंने पहले ही बताया है कि किन किन मामलों को इसके अंतर्गत रखा गया, अगर वैसे मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि वह इसका लाभ उठाएं और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना जो है मामले का समाधान कराएं और मामले को समाप्त कराएं ताकि जो है उनको शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।
1: एक बात और जानना चाहेंगे कि यूं तो डालसा के द्वारा जो भी मामलों का सुलह किया जाता है वो निःशुल्क होता है, तो क्या ये भी निःशुल्क है?
0: बिल्कुल, ये पूरा निःशुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे कार्यालय में आता है तो हम लोग उनका जो भी मामला जो टेकअप वहाँ करवाएंगे वो बिल्कुल निःशुल्क है, उनको किसी प्रकार के शुल्क की अदायगी की आवश्यकता नहीं है इस हियरिंग के लिए।
1: तो आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, हमें उम्मीद है कि हमारे जो रेडियो सेट के नज़दीक श्रोता बैठे हैं इसका लाभ जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हम मिल रहे थे चाईबासा के सचिव रवि चौधरी से और उनसे बातें कर रहे थे रमेश दास, और इसी के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब आशा पिंगा को विदा दें। नमस्कार।

काली घटा। यह है इस फिल्म का नगमा। फनकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

कर्मा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की।

कसम पैदा करने वाले की। आइए सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत। मुख्य स्वर है विजय बेनेडिक्ट का।

सामाइन अपरिहार्य कारणों से यह नगमा हम आपको नहीं सुनवा सके। सुनते हैं फिल्म खूबसूरत का यह गीत बादशाह और आस्था की आवाज़ों में।

तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।

इस गीत के साथ ही समाप्त हुआ आज का रसरंजन कार्यक्रम। अब पेश है फिल्म संगीत, जिसमें आप सुनेंगे मिश्रित गीत।

फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चंद मिश्रित गीत। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाह्न के 10:30 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित कार्यक्रम।

सच्चाई और न्याय की राह आसान नहीं होती। जब कोई कमजोर का साथ देता है तो स्वार्थी लोग उसकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अकेले में टूटते हैं, गलत समझे जाने पर रोते भी हैं, लेकिन अगले दिन फिर उसी मुस्कान के साथ दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति दर्द सहकर भी दूसरों को राहत देना है। अंततः जीत सत्य की ही होती है। आज के दौर में छल कपट और दिखावा करने वाले लोग भले ही दौड़ते नजर आए, लेकिन वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मंजिल उसे ही मिलती है जो धीमा, शांत और सहज है। बुराई लेने का साहस हर किसी में नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए विशाल हृदय चाहिए। आज ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए भी खड़े रह सके, जो नफरत के बीच प्रेम बांट सके, जो आलोचनाओं के बीच भी अच्छाई का रास्ता न छोड़े।

0: নন্দু বাবু আও আও।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। बातें करते हैं मौसम के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में गर्मी से अभी राहत नहीं मिलने वाली। दो दिन बाद राजधानी समेत पूरे राज्य में उमस की गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान है और इससे रात के न्यूनतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। राज्य में शुक्रवार को भी पलामू गढ़वा समेत राज्य के अन्य भागों में गर्मी रही है। और आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सिमडेगा में 10.5 मिलीमीटर बारिश हुई, गुमला में छिटपुट बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार यूपी के दक्षिण पूर्व भाग के ऊपर कायम साइक्लोनिकल सर्कुलेशन मौजूद है। तो आप जो है राज्य के आसपास के क्षेत्रों पर सिस्टम के कारण नम हवाओं का मौसम के बदलाव के आसार हैं। इसके बावजूद रांची समेत राज्य में गर्मी बनी रहेगी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान

0: लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। दोस्तों, अब बातें करते हैं इतिहास के बारे में और बताते हैं कि आज यानी 6 जून को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। आज ही के दिन 1995 में पाकिस्तान में बाल अपराधियों को कोरे मारने अथवा उनकी फांसी की सजा प्रतिबंधित की गई थी। 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था। 2001 में शाही पर गोलियां दीपेंद्र ने ही चलाई थी। प्रत्यक्ष धरती रिश्तेदार राजीव शाही का प्रेस में बयान। 2002 में इजरायली सेनानी राममल्ला में फिलिस्तानी नेता यासीर अराफात के मुख्यालय पर हमला किया था। 2004 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का आज ही के दिन निधन हुआ था। और 2005 में ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान में सहमति हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के नस्ल विरोधी नेता विनी मैडिकजेला मंडेला के कनाडा प्रवेश पर रोक लगी थी आज ही के दिन सन 2007 में। और 2008 में कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की अगुवाई वाली बीजेपी की पहली सरकार ने विश्वासमत हासिल किया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जापानी लैब कीबोर्ड ने कार्य करना शुरू किया था आज ही के दिन। तो इतनी सारी जानकारियों के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम बातें कर रहे थे इतिहास के बारे में, तो आपको बता दें कि आज यानी 6 जून को किन-किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1891 में मास्ती वेंकटेश अयंगार, जो कि कन्नड़ कहानी के प्रवर्तक और कन्नड़ की संपत्ति के रूप में ख्याति प्राप्त कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक थे, उनका जन्म हुआ था। और 1936 में डी रामनायडू, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1939 में गुरुबचन सिंह रंधवा, जो कि भारत के प्रसिद्ध एथलीट थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन 1901 में सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका भी जन्म हुआ था। शोक बहराइची, प्रसिद्ध शायर, उनका जन्म आज ही के दिन 6 जून 1884 में हुआ था। और 1829 में ह्यूम ए ओ, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1945 में टी सेन का आओ, जो कि भारतीय राज्य नागालैंड के वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1997 में पशुपति कुमार पारस, जो कि भारतीय राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म हुआ था। 1955 में वेद प्रकाश शर्मा, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आपको बता दें श्रोताओं की 1889 में उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, जो कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1748 में महाराजा अमर सिंह, जो कि पटियाला रियासत के महाराजा थे, उनका भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1699 में आलमगीर द्वितीय, जो कि 16वां मुगल बादशाह थे, जिसने 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक राज्य किया था। और आपको बता दें श्रोताओं कि आज ही के दिन यानी 6 जून 1929 में सुनील दत्त जी का भी जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम बालरज दत्त थे, भारतीय फिल्मों के अभिनय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। कुछ पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में सार्थक भूमिका निभाई थी। तो आइए उन पे फिल्माया ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: सोर
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम जोहार रांची यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वर यात्रा के 20 वर्ष पूरे होने पे डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर, जो कि पूर्व कार्यक्रम अधिशासी थे, उनसे मीनाक्षी शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य वाक्य के साथ संस्कृति सूचना संगीत समाचार और जन जागरण को आगे बढ़ाने वाले संस्थान आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का ये शानदार सफर है, जहां हम और आप साक्षात्कारों की श्रृंखला के माध्यम से मिल रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कार्यक्रम अधिशासी से करवा रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अपने तरीके से संवारने की बहुत अच्छी कोशिश की। लंबे समय तक आकाशवाणी रांची से जुड़े रहे और यहाँ आने वाले आकाशवाणी से जुड़ने वाले हर नए लोगों को बहुत कुछ सिखाने का काम किया है। आप हैं निवास चंद्र ठाकुर जी। तो ठाकुर सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये आप ही का स्टूडियो है जहाँ आपने कई रिकॉर्डिंग की है, जहाँ आपने कई लोगों को सिखाया है, कई लोगों से बातचीत की है, और आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपसे कुछ आपके संस्मरण जानूं, अपने श्रोताओं तक आपकी आवाज को पहुंचाऊं। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका।
1: नमस्कार मीनाक्षी, जोहार हमारे प्रिय श्रोताओं को। कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है कि आदमी सोचने लगता है कि क्या होगा भाई, हम अपने घर में आए हैं
0: जी,
1: लेकिन लग रहा है कि आज मेहमान है, और ये सबसे प्यारा घर आकाशवाणी मेरी जिंदगी, बल्कि आत्मा धड़कन सब कुछ
0: है जी।
1: और वैसे में मुझे अपने ही घर में मेहमान की तरह इंटरव्यू देना पड़े एक ऐसी टीन एज की लड़की जो उस समय थी और अब एक महिला हो चुकी हैं, मीनाक्षी शर्मा को, तो मुझे लगता है क्या भूलूं, क्या याद करूं, कहीं कुछ छूट तो नहीं जा रहा है। विस्तृत फलक है लगभग 40 वर्षों का मीनाक्षी, बहुत समय की तो साक्षी आप भी हैं
0: जी जी।
1: तो स्वयं मुझे लगता है, पहले मैं बताऊं कि आकाशवाणी मेरे लिए एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र, आकाशवाणी का
0: जी
1: की स्टूडियो मेरा आकर्षण का केंद्र रहा।
0: बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही था सर मेरे लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण था
1: और आप सोचिएगा कि कैसे ये लालसा जगी। तो गांव में जब हम लोग रहते थे, उस समय भागलपुर जिले का एक गांव था, दराचक नाम था, तो गांव में रेडियो में पटना केंद्र सुनते थे, जिसमें चौपाल, मुखिया जी और तरह लोग आते थे, और लोहा सिंह नाटक सुनते थे
0: बहुत ज्यादा।
1: तब से एक अजब रुमानियत चीजों में भरी रही कि काश आकाशवाणी में जा पाता
0: जी।
1: फिर कई नाटक किए पटना के रंगमंच पर और धीरे धीरे इस ओर मेरी यात्रा शुरू हुई
0: जी।
1: और मैंने ऐसा नहीं था कि आकाशवाणी कोई हारे को हरिनाम था मेरे लिए, तीन नौकरियां मेरी सरकारी थी,
0: बावजूद इसके जो
1: आकर्षण छोड़ के
0: आकर्षण जो था आकाशवाणी के प्रति, वो आपको इधर खींच रहा है। तो सर वो वाकया बताइए कि जब पहली बार आकाशवाणी के लिए आपको एक ऑफर लेटर आपके पास गया होगा और आपकी नियुक्ति यहाँ हुई होगी, वो नियुक्ति पत्र आप तक पहुंचा होगा, वो जो रोमांच था वो कैसा था सर, इसे साझा कीजिए।
1: मीनाक्षी अद्भुत, आप, मैं जो कहना चाहता था आपने वो बात मुझसे छीन ली
0: जी।
1: सच कहूं तो जैसे ऑल इंडिया कंपटीशन था लिखित परीक्षा
0: जी,
1: सहायक संपादक पद के लिए, मैंने भी लिखित परीक्षा दी और आकाशवाणी रांची में इंटरव्यू हुआ
0: बिल्कुल।
1: और उस समय जो निदेशक थे, केंद्र निदेशक SC विश्वास
0: जी,
1: और पूरा जो बोर्ड होता है बैठा था, इंटरव्यू अच्छा रहा लेकिन मैं हड़बड़ शुरू से हूं तो अपना फाइल समेटते वक्त मैंने इस तरह से फाइल समेटी कि फाइल का एक हिस्सा पानी का भरे ग्लास में लग गया और पूरा पानी लंबे टेबल पर गिरते हुए उधर जो चेयरमैन थे उनके
0: बाद चला गया।
1: मुझे लगा कि मैंने अपने सारे इंटरव्यू पर पानी,
0: लेकिन शायद ये आपकी भावनाओं का प्रवाह था जो पानी के रूप में वहां तक पहुंचा था और फिर आप जब यहाँ पर आए। सर क्या आपको याद आता है, जो आपने बताया था करीबन 40 वर्षों की जो यात्रा रही आकाशवाणी के साथ, आपने कदम से कदम मिलाए, इसे सजाने में, इसे संवारने में आपने बहुत कुछ किया, किया और मैं तो गवाह रही हूँ। जब भी मैं उस प्रशासनिक भवन के कॉरिडोर में पहुंचती थी और निवास चंद ठाकुर सर के ठहाके गूंजते रहते थे, और जब हम आपके कमरे में प्रवेश करते थे तो बहुत आप बड़ी शालीनता के साथ हमें बताते थे कि नहीं, इस तरह से लिखना चाहिए, क्यू शीट ऐसे बननी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए। ये तमाम चीजों को समेटने के बाद कुछ ऐसे लम्हे हो रहे होंगे जो आपको ताउम्र याद रहेंगे, आपके हृदय पटल पर अंकित हो गए होंगे। सर, थोड़ा साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: अनंत लम्हे हैं
0: जी।
1: कुछ आपने जो कहा कि जब आपको मिला
0: जी
1: नियुक्ति पत्र, कैसा लगा? सच में अद्भुत लगा। मैं निश्चिंत था कि मेरा तो होगा नहीं
0: जी
1: क्योंकि पानी वानी गिर गया, लेकिन जब खबर गई
0: जी
1: तो अद्भुत आश्चर्य लगा। उसके बाद बहुत दिनों बाद यहाँ ज्वाइन करने आया तो ज्वाइनिंग के वक्त एक शपथ दिलाई जाती है।
0: जी जी क्या शपथ थी?
1: शपथ थी कि मैं निष्ठापूर्वक जिस संस्थान में हूँ इसके आदर्शों का पालन करूंगा, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो सच है मीनाक्षी, आकाशवाणी एक तरह से मेरे लिए स्वर्णिम था, सोने का टुकड़ा था, और मैं एक कांच की तरह आया था। लेकिन संस्कृत में एक श्लोक है
0: जी
1: कि काच कांच संसर्गात धत्ते मार्गतिम द्युतिम तथा सत सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणतम। यानी कांच के सामने अगर सोना रख दिया जाए तो उसकी छवि कांच में पड़ती है, तो कांच भी सोने ऐसा चमकने लगता है। मुझे लगा मैं तो कांच
0: क्या था। बात है।
1: और मैं स्वयं को समझने लगा कि मैं आकाशवाणी चूंकि सोना है तो इसके बहुत सारे गुण से मैं आप्लावित होने लगा। मुझको फील होने लगा कि ये गौरव और इस गौरव की यात्रा का एक साथी सहचर पथिक मैं भी हूँ, और मेरे लिए ये गौरव का क्षण।
0: इतने अच्छे शब्दों में आपने बयां किया है, और ये अनुभूति समझ में आती है जब आप गहराई से, हृदय की गहराई से किसी चीज को, किसी लम्हे को जीते हैं, तब जाकर ये शब्द शायद बाहर निकलते हैं जिस तरह से आपने वर्णन किया। ठाकुर सर, बहुत बदलाव, परिवर्तन कहते हैं प्रकृति का नियम है। आकाशवाणी ने भी बहुत सारे परिवर्तन देखे। जब हम स्पूल पे रिकॉर्डिंग किया करते थे, हाथ से घुमा के उसको क्यू किया करते थे, अगर कहीं स्पूल टूट गई तो उसे सेलो टेप लगाना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन के साथ आकाशवाणी भी डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, अब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वो जो परिवर्तन का सिलसिला रहा उसे आप कैसे देखते हैं?
1: आपने मीनाक्षी जो चर्चा की वो तकनीकी परिवर्तन है।
0: जी जी।
1: तकनीकी परिवर्तन, कार्यक्रम गुणवत्ता परिवर्तन, दोनों
0: अलग,
1: दो दो अलग चीजें हैं। लेकिन गुणवत्ता को, प्रसारण की क्वालिटी को अगर तकनीकी सहयोग बेहतरीन मिलता है
0: जी
1: तो उच्च, तो जो स्तर होता है प्रसारण का वो बहुत बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: पहले हम लोगों का दायरा था, कुछ ही क्षेत्र में सुन सकते थे। लेकिन मीनाक्षी मैं बताऊं कि 2 साल पहले मुझे यूरोप जाने का सौभाग्य मिला, तो अपनी आदत के अनुसार मैंने स्विट्जरलैंड में भी मोबाइल में ट्यून किया तो आकाशवाणी रांची सुन सका,
0: क्या बात,
1: पेरिस में सुन सका, एम्स्टर्डम में सुन सका, यानी
0: यही
1: ब्रसेल्स में सुन सका। तो तकनीकी की जो
0: वैश्विक स्तर पर हमारी आवाज पहुंच रही है,
1: वैश्विक स्तर पर
0: बिल्कुल,
1: वो केवल डाउनलोड कर लेना होता है प्रसार भारती का और आकाशवाणी का जो जो
0: ऐप है,
1: तो इतनी खुशी होती थी कि इतने दूर जाकर मुझे आकाशवाणी का प्रसारण सुनने का सौभाग्य मिला। इस तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि इस संस्था में रहा। 1981 में ज्वाइन करके 2015 में दूरदर्शन जाकर रिटायर हुआ था
0: जी।
1: लेकिन ये आकाशवाणी कहते हैं ना कि कृष्ण जब चले आए तो गोपियों को उद्धव जी समझाने गए कि अब तो भूल जाओ, कृष्ण तो चले गए द्वारका, तो मैं चला गया था दूरदर्शन। लेकिन गोपी ने कहा उधो तिरछे जीव हैं गड़े, गड़ के तिरछे हो गए, तो आकाशवाणी मेरे दिल में गड़ के तिरछी,
0: निकलना नहीं चाह रही थी,
1: निकल सकता ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये और आपने कहा कि बहुत सारी यादें हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: कुछ कुछ जो आकाशवाणी के साथ मुझे गौरव मिला, एक दो यादें आप चाहते
0: जरूर जरूर जरूर हमारे श्रोता जरूर सुनना चाहेंगे।
1: मीनाक्षी, आपने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की बात तो सुनी होगी, जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया था, तो रांची के क्षेत्र में रामगढ़ आता है जहाँ फौजी जहाँ पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट दो है
0: जी।
1: तो एक अवसर था सिख रेजिमेंट का, तो एक कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं वो रिटायर्ड, तो उसमें आए थे लेफ्टिनेंट जनरल जियो सेन सी स्टर्न जॉन, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, वही लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्होंने साइन किया था पाकिस्तान के नियाजी के साथ। जब कभी फोटो देखिएगा तो एक तरफ अरोड़ा जी बैठे हैं लेफ्टिनेंट जनरल, एक तरफ ए के नियाजी और साइन कर रहे हैं पेन से, तो वो आए थे। वो
0: उन शख्सियतों को यहाँ हमने आमंत्रित,
1: यहाँ आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मैं रामगढ़ गए और मुझे गौरव है कि मैंने उनसे हाथ मिलाया।
0: क्या बात है।
1: और
0: अविस्मरणीय पल है सर ये तो, है ना, जो कभी नहीं भूले जाते।
1: और कहा कि मैं धन्य हो गया कि इसी हाथ से पाकिस्तान आपने सरेंडर लिया था पाकिस्तान का, तो एक गौरव का वो था। फिर एक गौरव का और दूसरा क्षण बताता हूँ, जब मैं आकाशवाणी जमशेदपुर गया था, चूंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष हैं इसलिए जमशेदपुर भी चले।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वहाँ एक जगह आए थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान।
0: क्या बात है।
1: तो मैं गया, सोचा कि उनसे इंटरव्यू लूँ, प्रणाम किया, वो कई लोग बैठे थे, उनसे कहा कि देखिए उस्ताद साहब, मैं आकाशवाणी से आया हूँ, चाह रहा हूँ कि आप कुछ बोलिए। कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा।
0: अरे
1: मैंने कहा इंटरव्यू लेना है, कुछ नहीं दूंगा। कि बाप रे बाप, आप सब हंस रहे हैं चारों तरफ। तो मैंने कहा कि देखिए हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होगी, तो मैं क्या करूं, गौरव की बात होगी तो मैंने
0: क्या, वजह क्या थी सर?
1: वही मैंने कहा कि फिर आप से तो आकाशवाणी की सुबह की शुरुआत होती है, जब आपने शुरू से आकाशवाणी को दिया कुछ तो बोलिए। नहीं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मैंने कहा देखिए मैं तो लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता हूँ।
0: अगर आपकी रजामंदी हो तो आपकी कुछ
1: नहीं, मैं जानना चाहता था कि आकाशवाणी सुख की धुन है, और सुनते हैं जब हृदय में दर्द का सागर लहराता है तो मिठास फूटती है, सुख का दरिया प्रवाहित
0: होता है।
1: तो जरूर हृदय में आपके कोई दुख का समंदर जरूर लहरा रहा होगा, जिससे कि ये मधुर धुन फूटी। वो कह रही सही कह रही हो, सही
0: क्या बात है। मतलब आपने जो आदमी पूरी तरह से कह रहे थे कि मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा आकाशवाणी को, और आपके आकाशवाणी शायद यही ऊंचाई देता है, विचारों को ऊंचाई देता है कि हम अगले से किस तरह से बात कर लें, उनके हृदय की बातों को कैसे श्रोताओं तक पहुंचा।
1: मेरे साथ थे अजय कुमार राय, उस समय ट्रैक्स थे आकाशवाणी। मैंने कहा, इशारा किया,
0: रिकॉर्डिंग
1: शुरू की। उसके बाद का सच कह रहे हो, वो करबला का मैदान, प्यासे सब लोग मर रहे हैं, मैं रो रहा हूं। और जानते हो मेरा नाम बिस्मिल्ला है, कैसे पढ़ा बिस्मिल्ला कहूं, मैंने कहा कुछ है, मैं क्या बोलता। मैं कह जी, तो डुमरों में जब मेरी अम्मी जान को दर्द हुआ था ऊपर, उसके बाद कुछ देर के बाद वह मेरा जन्म हुआ होगा, तो वहां से जो जन्म दिलाने वाली थी धाई, उन्होंने दूर मेरे अब्बू को कहा कि आपको लड़का हुआ है, तो अब्बू बोले बिस्मिल्ला, मेरा नाम बिस्मिल्ला हो गया।
0: क्या बात।
1: उसके
0: है?
1: बाद जो इंटरव्यू हुआ, मीनाक्षी, मैं क्या बताऊं,
0: बिल्कुल तो शब्द नहीं है शायद, इन क्षणों को बयां करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम ऐसे लम्हों को आकाशवाणी के माध्यम से जीते हैं। सर हमेशा से अब जब युवा पीढ़ी आ रही है, बहुत सारे प्राइवेट प्रसारण के बहुत सारे केंद्र खुल गए हैं, तब आकाशवाणी के सामने एक सवाल होता है, इसकी निष्पक्षता बनी रहे, इसकी विश्वसनीयता बनी रहे, और जो लगाव आप लोगों का रहा आकाशवाणी से या हमारा रहा आकाशवाणी से, वो लोगों के बीच जो प्रतिष्ठा रही, क्योंकि जब भी मैं आती थी आकाशवाणी के प्रवेश द्वार पर, जब भी मैं गेट पे आती थी तो एक अलग रोमांच होता था, अलग अपने आप में गर्व अनुभव होता था, कह रहे आज तो आकाशवाणी जाना है। तो सर ये महत्ता बनी रहे, इसके लिए क्या करना होगा हमें? और अभी आप आकाशवाणी को 90 वर्षों की जो शानदार सी यात्रा का हम उत्सव मना रहे हैं, वहां आप आकाशवाणी को कहां खड़ा हुआ देखते हैं?
1: मीनाक्षी, ये जो प्रश्न है ना, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसका उत्तर यही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले यहाँ के जो यहाँ कर्मचारी नहीं होते थे, सब सहभागी होते थे, सब कलाकार होते थे।
0: बिल्कुल,
1: तकनीशियन भी यहाँ के कलाकार होते थे और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, इंजीनियरिंग लोगों ने भी, और दोनों मिल के ये दुनिया चलती थी
0: जी।
1: लेकिन कहूँ मन से बहुत लोग हार गए, यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रसारक हैं
0: जी,
1: वो लगता है मन से सारे लोग नहीं हारे होंगे,
0: कुछ
1: एक दो लोग हैं
0: कुछ
1: जो इस तूफान में भी एक दिए को जला कर रखे।
0: बिल्कुल,
1: ये दिया जलाना बहुत जरूरी, अंदर का दीप।
0: बिल्कुल,
1: अथ दीपो बेहर अथ, अंदर अंतर दीप,
0: अपने अंतर का दीप,
1: अंतर दीप। हमको लगता है कि प्रतिभाशाली लोग हैं
0: जी,
1: उनका चुनाव होता है
0: जी,
1: सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन कहीं चारों तरफ की चकाचौंध देख के उनको लग रहा है ये रास्ता अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है।
0: दुविधा की स्थिति में
1: जब आप आकाशवाणी जाइएगा दिल्ली, तो वहां बापू महात्मा गांधी का एक विचार लिखा है कि अपनी खिड़कियों को खुली रखने दो, चारों तरफ से ताजा हवाओं को आने दो, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पैर उखड़ जाएं और तुम बह जाओ।
0: क्या बात है,
1: सोचना होगा कि हम बह तो नहीं रहे।
0: बिल्कुल, अपनी जड़ों से हमें जुड़े रहना पड़ेगा, आकाशवाणी का के प्रति जो स्नेह है, जो सम्मान है, उसे हमें
1: शुरू में ही, मीनाक्षी आपने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो मेरा हित, हमारा हित, देश का हित, राष्ट्र का हित, जन जन का हित
0: होना चाहिए।
1: बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के प्रोग्राम हम करते हैं सबका हित, केवल चंद फिल्मी गाने तो नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं,
1: अभी जो मैं किन्हीं की आलोचना नहीं करता, बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं उनको सुनिए, वो जो बोलने वाली हैं क्या बोल रही हैं कुछ पता नहीं
0: जी।
1: मैं बाजार गया था तो भिंडी महंगी थी, सहजन महंगा थी, तो सुनिए फिल्म बाजार का ये गीत।
0: आकाशवाणी की जो गरिमा है,
1: मैंने वो लोग जो बोलते हैं, कोई तालमेल नहीं,
0: बिल्कुल
1: कोई उनको बताने वाला नहीं, न वो जानने को तैयार, बस फास्ट फास्ट। और आप कोई भी चैनल सुन लीजिए, आठ गाना रख लीजिए फिल्मी, वही दिन भर 24 घंटे
0: चलता रहेगा,
1: चलता रहेगा।
0: बिल्कुल ठाकुर सर, जब आपने सिखाने की बात कही तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगी कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी और मैंने गेट पे दरबान से बोला कि मुझे अनाउंसर बनना है, तो

0: वो भी मुस्कुराया और उसने मुझे आपका पता दे दिया कि आप इस कमरे में चले जाइए, निवास चंद्र ठाकुर या उनसे मिल लीजिए। जब मैं आपके पास गई और मैंने बोला कि सर मुझे अनाउंसर बनना है, तो शायद आपके चेहरे पर भी थोड़ी एक मुस्कान आई थी, लेकिन उसके बाद आपने बैठा के बहुत अच्छे से बताया कि हमें सीढ़ियों पर चढ़ के आगे मंजिल तक जाना होगा, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, और फिर आपने सिखाया और वही तरीका मैं आज भी अपनाती हूँ कि कैसे क्यू शीट बनानी है। जब हम स्क्रिप्ट लिखा करते थे और हमें पता होता था कि सामने जब निवास चंद्र ठाकुर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में है, तो स्क्रिप्ट आप तक देने में हमारे हाथ कांपते थे कि पता नहीं कहाँ गलती हो जाए। तो ये जो आपका सिखाने का तरीका था, वो चीजें शायद आकाशवाणी को, इसके प्रसारण को बहुत ऊंचाइयां देती हैं, तो उस चीज की जरूरत मुझे लगता है आज भी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर?
1: मीनाक्षी, हमारा सौभाग्य होता आपको अगर देखता मैं कि आकाशवाणी के अनाउंसर के बाद आप निदेशक और बहुत बड़ी प्रसारक।
0: सर ये बहुत बड़ी बात आप
1: लेकिन कह रहे हैं। लेकिन तो भी आप आकाशवाणी से जुड़ी हैं, दूरदर्शन से जुड़ी हैं। आप तो शायद प्लस टू में पढ़ती थी जब आप आई थी, छोटी किशोरी थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उस समय जब कुछ मैंने शायद आपको लिखने दिया और आपने जो लिखा, तो सच में उसी वो मेरा जो पहला भाव था वही आपसे जुड़ा।
0: सर वो पहला टॉपिक भी मुझे याद है, अगर कलम नहीं होती,
1: अगर कलम जो भी लिखा था, जो भी आपने लिखा मन को छू गया, दिल को छू गया। मुझे लगा अरे मेरा ही कोई प्रतिरूप, मैं जैसा लिखना चाहता हूँ।
0: इतनी बड़ी बात,
1: ये एक छोटी लड़की ये कैसे कर रही है? तो वो जो सम्मान था, वो जो प्यार था
0: जी,
1: वो उस लंबे सफर के बाद भी आज भी है।
0: सर उसने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, मैं सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे उस दौर में आने वाले जो भी युवाणी में थे या किसी भी सेक्शन में आने वाले, सबको बहुत कुछ उस दौर ने सिखाया है और वो सीख शायद अब कम पड़ती जा रही है जैसा मैं महसूस करती हूँ।
1: मीनाक्षी, जब पहले युवाणी आकाशवाणी रांची में साप्ताहिक कार्यक्रम था, जिस दिन से ये दैनिक हुआ मुझे उसमें दे दिया गया।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर ए रहमान थे, मैं था, तो उस युववाणी से जुड़ गया और उसी प्रथम पहले दिन से युवाओं से मेरा परिचय होने लगा। मीनाक्षी शर्मा, प्रियदर्शन
0: जी,
1: और बताओ मीनाक्षी, कई तो हुए जो IFS IAS हो गए और कहीं कहीं वो मिले और उसी तरह से लगता था पैर छू लेंगे मेरे। मैंने कहा भाई आप बहुत बड़े, मेरे
0: वो सम्मान कभी कम नहीं हो सकता।
1: मेरे ही विभाग में, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय में, एक तिवारी नाम बोल रहे हैं, वो संयुक्त सचिव होके, और उनको मैंने कुछ सिखाया होगा, कुछ याद नहीं।
0: बहुत
1: वो कहने लगे सर, हम क्या आप सर बोल रहे हैं, आप तो हमारे 10 पीढ़ी ऊपर हैं पोस्ट में। तो कहा
0: सर गुरु हमेशा, इसीलिए हमेशा गुरु क्या बोले ऊपर
1: तो
0: होता है।
1: उस समय मेरा ध्यान रहता था कि भाषा गपशप की हो
0: जी,
1: सुंदर हो, आकर्षक हो। मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन वो जो आ रहा है उसकी आवाज स्वीट हो, और स्वीट में भी उसको एक प्रवाह ला दे, ऐसा प्रवाह ला दे कि सामने वाला जो बैठा है बंद जाए,
0: सब कुछ जीवंत हो जाए,
1: बंद जाए, उसको ये नहीं लगे कि कोई किताब लेके पढ़ रहा है कि 1857 में ये युद्ध हुआ, उसके बाद ये हुआ वो। अरे ये आकाशवाणी नहीं है, आकाशवाणी में क्लिष्ट भाषा नहीं
0: चाहिए,
1: इसमें बहुत सरल, बहुत प्रवाहमान,
0: बिल्कुल हवाओं की तरह प्रवाह,
1: हवाओं की तरह रिमझिम, बारिश की,
0: बारिश की तरह,
1: माटी की सुगंध की तरह,
0: क्या बात है। कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रकृति से, अपनी धरती से जुड़े रहना, अपनी आत्मा से जुड़े रहना है, तब आकाशवाणी के प्रसारण को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सर इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी यादें हैं कि उन्हें शायद ये आधे घंटे का जो हमें स्लॉट मिला है उसमें समेटना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, और मेरे हृदय में तो इतनी बातें हैं कि मैं शायद उसका एक चौथाई भी आपसे बात नहीं कर पा।
1: फिर भी मीनाक्षी एक दो बात और कहीं कहीं गया था। देखिए एक इंटरव्यू और बाल कवि वैरागी आए थे संसदीय समिति में, मैं और यही थे मधुकर पांडे, तो गए थे इंटरव्यू लेने, वो भी वे कवि और सांसद, लोग कहे क्या लेंगे, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव से कुछ पूछा था डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी से कि कैसे इंटरव्यू लें, सोचिए इस उस उम्र में भी मैं किन्हीं से पूछता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जब उनसे पूछा, उनके दिल की बात कही, तो वो भी रोने लगे थे। और मधुकर पांडे अब रिटायर्ड हो गए हैं आकाशवाणी, वो गवाह हैं, रोने लगे, आंसू पोंछते हुए उन्हें हिंदी की दशा, हिंदी की चर्चा संसद में किस तरह से भस हुई।
0: बिल्कुल वैसे ही जब

0: स्तर होता है उस स्तर को मेंटेन करता है, आगे बढ़ाता है। हम तो अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत हड़बड़ी है, सही है, आपको तुरंत चाहते हैं चैनल बदल लें, तुरंत चाहते हैं, लेकिन दवाई जो होती है कभी कभी कड़वी भी होती है,
1: लेकिन उसका असर अच्छा
0: है, लेकिन असर होता है कि आप स्वस्थ होते
1: हैं, स्वस्थ हो जाते हैं।
0: तो आकाशवाणी का प्रसारण आपको मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आपको क्षण भर के लिए फिल्मी दो चार सुन के फिर तुरंत बक बक बक बक, बक फिर तुरंत ये फिर फास्ट, वो नहीं है। जिंदगी केवल अल्लड़ नदी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: एक प्रवाह है, लंबी राह तक वो प्रवाह कल कल छल छल प्रवाहित है। तो थोड़ी स्थिरता अगर जीवन में चाहिए, थोड़ी उन्नति चाहिए, थोड़ी गहराई चाहिए,
1: क्या बात,
0: तो थोड़ा सा रुकिए। आकाशवाणी का चाहे विविध भारती हो वो सुनिए, आकाशवाणी का मुख्य जो चैनल है उसको सुनिए,
1: बिल्कुल
0: हमारे बेहतरीन नाटक सुनिए। अगर थोड़ा सा धैर्य लाइए, अगर आज हम चाहें कि धान रोपें और आज ही काट लें, वो नहीं है
1: जी।
0: वो आप कहीं प्लास्टिक का फूल में एक दिन सुगंध उड़ा सकते हैं, प्लास्टिक लाइए उसमें फूल खोसिए, इत्र परफ्यूम मार दीजिए और सूंघ लीजिए। गुलाब को सूंघने के लिए आकाशवाणी गुलाब
1: थोड़ा इंतजार करना,
0: वो माली मेहनत कर रहा है। यहाँ के जितने लोग हैं माली हैं, सारे प्रसारक चाहे परमानेंट हों, आकस्मिक हों, अवैतनिक हों, वैतनिक हों, सारे माली हैं, सब गुलशन को सजाए हुए हैं। उनकी खुशबू का अगर आनंद लेना शुरू कीजिएगा ना, छाया गीत सुनिए ना, आप सारा कुछ भूल जाएंगे,
1: एकदम दिल की गहराई तक उतर जाते हैं।
0: लेकिन
1: और वो जो अनाउंसमेंट होता है उसके साथ जो बातें होती हैं, वो लगता है कि कोई एकदम सचमुच दिल से कुछ
0: दिल से
1: कह रहा है। तो ये लगाव बहुत जरूरी है।
0: देखिए यहाँ तो एक से एक कार्यक्रम हुए ना,
1: जी जी,
0: आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुई, 25 वर्ष पर हम लोगों ने रजत यात्रा कार्यक्रम स्मृति सुरभि की थी, सारे कवि लोग, बड़े वरिष्ठ कवि लोग आए थे
1: जी।
0: और इस क्षेत्र में सारे बड़े कवि आते हैं, लोहरदगा में नीरज आए थे, एक घंटा उनसे मैंने बातचीत की और उनकी कविताओं की रिकॉर्डिंग, क्या है, अद्भुत लगता है। राधा कृष्ण पुरस्कार रांची एक्सप्रेस से दिया जाता था
1: जी।
0: उसमें मैंने एक बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू लिया, जैनेन्द्र कुमार से और त्रिलोचन, यानी क्या बोले, बहुत सारे, रघुवीर सहाय, सारे बड़े बड़े लोग आए, सब आकाशवाणी स्टूडियो में आते थे, इंटरव्यू देते थे,
1: सबके लिए बहुत गौरव का क्षण होता था।
0: उपेंद्रनाथ रस्क आते थे
1: आकाशवाणी में आना, यहाँ बातें करना, श्रोताओं से बातें करना, बहुत बहुत गरिमा की बात लोग समझते थे। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के हृदय में आज भी ये भाव
0: है
1: और ये बने रहेंगे जब तक आपके जैसे लोगों का, जो आकाशवाणी के लिए जो समर्पित शख्सियतें हैं, उनका समर्पण और उनका प्रेम, उनका लगाव आकाशवाणी के प्रति रहेगा, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तब तब आकाशवाणी ऐसे ही अपनी यात्रा के कई सुनहले पड़ावों पर आगे बढ़ती रहेगी। तो सर आज आप हमारे बीच आए, बहुत सारे अविस्मरणीय यादों को समेटने की हमने कोशिश की, बहुत सारे लम्हे हमारे साथ आए, बहुत सारे छूट गए, लेकिन जो छूट गए उनको फिर कभी हम अपने श्रोताओं से साझा करेंगे। लेकिन आज हमारे बीच आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार श्रीनिवास चंद्र ठाकुर सर।
0: धन्यवाद मीनाक्षी शर्मा जी और हमारे प्रिय श्रोता, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और आप आकाशवाणी से जुदा मत होइएगा, इसको हृदय में उतारते रहिए। जोहार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर पूर्व कार्यक्रम अधिशासी से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

दोस्तों, कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मैंने प्यार किया के इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर की और धुन बनाई है रविंद्र जैन ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, और इस गीत को सुनना चाहा है इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीवल्ला नूरजहां, राज नंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। तो आइए सुनते हैं इन सबों की फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून अंसारी की, पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और आसमा नाज अंसारी की, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा की, सरीमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुल फराज भागलपुरी की। और इन सबों ने फरमाइश की है फिल्म राम तेरी गंगा मैली की इस खूबसूरत गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: தலைமை கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है दोस्तों राजा बाजार भिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओम नंद केसरी, धनानंद केसरी, विनोद केसरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा, निवान शर्मा। और ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक के इस प्यार से गीत को। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आनंद मिलन ने।

दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनदीप मंटू, मोनू सोनू आराध्या की, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। और ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पापा कहते हैं कि इस खूबसूरत से गीत को, जिसे गाया है उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

सभी श्रोता सखियों को शिल्पी का प्यार भरा नमस्कार। दिन के 12 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं आपके बीच लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। बहनों, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, तो चलिए निकल पड़ते हैं अपने सुहाने सफर पर अपनी बातों के साथ। बहनों, हम जानते हैं कि आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल बखूबी निभाती हैं, क्योंकि परिवार स्वस्थ और प्रसन्न हो तो हमारी परिवार रूपी बगिया के हर नन्हे फूल भी खिलखिलाते हैं। शायद इसलिए महिलाओं को परिवार की धुरी और सृजनकर्ता भी कहा गया है। हम परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों के पालन पोषण, बुजुर्गों का ख्याल और साथ साथ रिश्तों को भी बखूबी निभाते हैं। सखियों, रिश्ते चाहे परिवार से हो या पर्यावरण से, दोनों से स्वाभाविक प्रेम बढ़ता जाता है। आदिकाल से महिलाएं पर्यावरण से जुड़ी हैं। हमारे यहाँ पीपल, वट वृक्ष, नीम, आंवला, आम पल्लव, बेलपत्र, तुलसी, केला, इन सभी की पूजा होती आई है और यही कारण है कि महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में पुरुषों से आगे रही हैं। सखियों, पेड़ पौधे ही हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, हमारे आसपास पेड़ पौधे न हों, नदियां की कलकल आवाज सुनाई न दे, हवा शुद्ध न मिले, तो हमारा जीवन खुशहाल होगा नहीं ना? इसलिए आज हमने इस विषय को चुना है और हमने कल पर्यावरण दिवस मनाया है। उम्मीद है कि हमारी जितनी भी सखियां हैं उन्होंने एक एक पेड़ जरूर लगाया होगा। बहनों, हम अपने जीवन शैली में छोटी छोटी अगर हम बदलाव शुरू कर दें तो निसंदेह आने वाली पीढ़ी भी अपने सुंदर वसुंधरा का आनंद ले पाएगी। बहनों, कल क्यों, हम आज से ही संकल्प करें कि हम पर्यावरण को नुकसान होने वाली चीजों को नहीं अपनाएंगे, वैसी ही वस्तुओं को जीवन का अंग बनाएंगे जो सबके हित में काम आए। और इसकी शुरुआत हम अपने रसोई घर से कर सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक के सारे बोतल, पॉलीथीन, प्लेट्स आदि से हम अगर दूरी बढ़ा लें। सखियों, बाजार जाते वक्त घर से झोला को लेकर जाएं, चाहे साग सब्जी खरीदनी हो या फल दूध दही। घर की ऊर्जा को बचाएंगे और बेवजह कमरे में पंखा, बल्ब, कूलर को हम नहीं चलाएंगे तो निश्चित है कि हमारी जो छोटी छोटी बर्बादी है वो बच जाएगी। सखियों, पानी की बर्बादी पर भी हम ध्यान दे सकते हैं ताकि हमारे घर का जल व्यर्थ न बहे। घर में अगर गाड़ी है, स्कूटी है, बच्चों की साइकिल है तो हम बाल्टी में पानी भर करके हम उसे धो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा घर से शुरू करनी होगी। संसाधनों को खूब सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कम दूरी अगर तय करनी हो आसपास कहीं अगर हम जाएं तो पैदल या साइकिल की सवारी भी कर सकते हैं। सखियों, गर्मी की छुट्टी हो गई है इसलिए घर के बच्चों के साथ उनके हाथों पौधारोपण कराना चाहिए। और हाँ, अगर कोई पौधा बच्चों को पसंद है तो आप उसे ही लगवाएं ताकि बच्चे भी इसी बहाने प्रकृति से प्रेम बढ़ाएंगे। बच्चों को पौधे के महत्व और संरक्षण की जानकारी भी देनी चाहिए। बहनों, बातें छोटी भले लगती हो पर एक बड़े पेड़ से कितने फायदे हैं और छोटे पेड़ से भी कितने फायदे हैं, इसका महत्व और उपयोगिता हमने देखी। याद है ना, आज से 5 वर्ष पहले जब कोरोना काल था तब हमने पेड़ पौधे के महत्व को जाना और उसे अपना कर स्वस्थ भी हुई। इसलिए हमेशा याद रखिए कि यह सुंदर वसुधा केवल हमारी संपत्ति नहीं बल्कि साझी जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ियों की अनमोल धरोहर है। इसलिए 3R के सिद्धांत को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बहनों, सादगी भरा जीवन अपनाइए, कचरे का सही प्रबंधन करिए और हाँ, सबको उपहार में एक पौधा अवश्य दीजिए ताकि उसकी बगिया जहाँ भी उसे वो लगाए वो भी खिलखिला उठेगी। और भाई, जब खिलखिलाने की बात हो रही है तो चलिए हम भी नील गगन के तले थोड़ा सा मुस्कुरा लें।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज शनिवार है। शनिवार का दिन होता है साहित्य के रंग में डूबने का। तो चलिए, प्रस्तुत है कहानी, शीर्षक है पुनर्नवा, आलेख एवं वाचन स्वर शिल्पी यानी मैं। आज सुबह की सुनहली किरणें कमरे की खिड़कियों से अंदर झांक रही है। नम्रता अपने कमरे से सटे बालकनी में कुर्सी पर बैठ अपने अहाते में उन पेड़ पौधों को एक टक निहार रही थी। ओह गुलमोहर, पूरा पेड़ लाल फूलों से सजा है। अरे ये कब इतना बड़ा हो गया? हाँ हाँ, याद है मुझे जब मैं पर्यावरण दिवस पर इस नन्हे से पौधे को रोपी थी। फिर नजर घुमाई, देखा अमलतास भी है। अरे इतनी चिलचिलाती धूप की तपिश में खिले खिले निखरे फूल, पीले चमकीले रंग और गुच्छों में नीचे की तरफ लटके लटके फूल आने से पेड़ मानो फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता सा सज गया था। आखिर अमलतास ही तो बरखा रानी के आने का संदेश वाहक बनता है। और इन गुच्छों से लदे फूलों पर मधुमक्खियां तितलियां भी खींची चली आती है।

आज नम्रता अपनी बगिया को ऐसे निहार रही जैसे वो खुद अपने ही घर की मेहमान हो। धीरे धीरे करके उसे शहतूत, सतालू, आम्रपाली आम, लीची सबकी देखने की चाहत पड़ी। अरे, इसे मैंने कभी लगाया था। लेकिन मन ही मन ग्लानी भी थी, क्या मैं अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त रही, कभी पौंका ही नहीं मिला। सच कहूं तो सुबह घड़ी की सुई से भागती फिरती जिंदगी कटी। आज चाय की चुस्कियों के साथ बीते दिनों की कई बातें याद आने लगी। कार्तिक, तुम्हें याद है ना कि कभी हमने ऐसे इत्मीनान से चाय पी हो? नहीं ना? कार्तिक ने भी चुटकी ली। मुझे तो तुम हमेशा एक्सप्रेस लगी। नम्रता ने भी हामी भर दी। सच कार्तिक, जब दोनों कामकाजी हों तो ऐसा ही होता है। मुझे तो याद ही नहीं है कभी चाय ऐसे हम दोनों एक साथ पिए हों, एक दूसरे का लंच पैक करते, बच्चे के लिए खाना बनाकर रखना, फिर उसे फ्रिज में डाल देना, घर की चाबी एक दूसरे को पकड़ाते हुए और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए संभालते संभालते ये गृहस्थी चली। हम चाय पीते नहीं थे कार्तिक, बल्कि कभी कटोरी तो कभी प्लेट में जल्दी जल्दी ठंडी करके घुटक जाते थे, क्योंकि कार्यालय समय से पहुंचना होता था। इसी हंसी ठिठोली में आज एक वादा कार्तिक ने किया नम्रता के साथ।

32 वर्षों की भाग दौड़ भला कैसे भूलती नम्रता। तभी बेटी ने आकर हाथ में एक लिफाफा बढ़ाया। मम्मी, यह है आपकी चिट्ठी, कल ही डाकिया दिया। नम्रता ने बड़े उत्साह से पूछा, चिट्ठी? हाँ हाँ, देखिए तो भला। भला आज के जमाने में भी ईमेल इंस्टा के बाद भी आपकी चिट्ठी आती है, और मम्मी पता है वो भी पते हिंदी में लिखे हैं। अरे, तो इसमें इतना अचरज क्या है भाई, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। मैं तो आज भी अपने कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में शुरू से हिंदी में ही हस्ताक्षर करती आई हूँ। बेटी ने कहा, तब तो आपकी सखी ही होंगी, कहते हुए बालकनी से निकल गई। नम्रता मन ही मन कही, ये आजकल की लड़कियां भी ना। ओह, पास बैठे कार्तिक सारी बातों के गवाह थे। लिफाफा खोलते ही लिखावट से पहचान गई, देखो जूली का खत है, उसे हमारी रिटायरमेंट याद थी, जरूर इसमें शिकायतों का पुलिंदा होगा। वैसे हो भी क्यों ना, मैं जब से नौकरी ज्वाइन की ना, ना ही सखियों से मिली और ना ही रिश्तेदारों के घर शादी ब्याह के मौके पर गई। कई नाते रिश्ते छूट गए। देखना कार्तिक, यही लिखा होगा जूली ने। ओह नम्रता, इस बार तुम गलत हो सकती हो। कार्तिक बहुत शांत और सुलझे थे, इसलिए तो उनके व्यवहार से नम्रता प्रभावित हुई थी और सहकर्मी संग जीवन संगी बनाने का निर्णय ही मन बना लिया और हर कदम दर कदम दोनों एक दूसरे का साथ निभाया। लेकिन हाँ, बस एक ही ख्वाहिश थी,

गीत बंद होते ही तंद्रा टूटी। जरा लिफाफा तो खोलो, क्या लिखा है इसमें? सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखे थे, सुखमय जीवन की दूसरी पारी की बधाई हो सखी। तुम दोनों के जीवन का यह नया चरण खुशियों से भरा हो। अपने मनचाहे काम करो, स्वस्थ रहो और हाँ व्यस्त रहो, सानंद रहो। और सच कहूं तो बाय बाय 9 to 5। हाँ एक बात याद दिलाऊंगी आज, जो तुमसे कभी नहीं कही। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, 22 नवंबर को गोलू की शादी है। अरे अरे वही गोलू जिसकी तुम गाल खींचती थी, खूब खेलती थी, याद है ना? जरूर आना।

देखो नम्रता, आज से पहले ऐसी फुर्सत की घड़ी कभी नहीं मिली, इसलिए हम अपने बेटे के पास जाएंगे। वो बहुत दूर रहता है, उसे भी हमारी ज़रूरत है। कार्तिक और नम्रता अगले महीने विदेश चले गए। बेटा, बहू और छोटकू श्रेयस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते मिले। देखते देखते एक दो महीने बहुत अच्छे से गुजरे। उन्होंने कई दोस्तों से भी मिलवाया। भारतीय बच्चों से मिलकर अच्छा लगा और बहुत अच्छा उन लोगों का एक ग्रुप था वहाँ। हर वीकेंड पर मुलाकात होती थी। एक दिन बहू की दोस्त ने पूछा, आंटी आप दोनों रिटायर हैं ना? तब तो हमारी दोस्त को बहुत आराम हो जाएगा, ना खाना बनाने की दिक्कत, ना ही बच्चों की चिंता। अरे अरे, हाँ हाँ, आपकी बहू ने बताया कि अब मम्मी संभालेंगी। नम्रता को कई दिनों से एहसास होने लगा था कि बहू बेटे धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां हम पर थोप रहे हैं। उफ, ऐसी बात है। सुनो कार्तिक, अब हम दोनों भारत वापस लौटना चाहते हैं। यह सुन बेटा चौंका। क्यों माँ, आप वहां क्या करेंगी? कैसे वक्त कटेगा? और यहां श्रेयस को आप देखेंगी तो मैं और टीना काम करेंगे। पापा, आप ही मम्मी को समझाइए कि रिटायरमेंट होता ही है बच्चों को हेल्प करने के लिए। नम्रता के सब्र का बांध टूट चुका था, स्वर में बेरुखी थी। अच्छा, हम और कार्तिक पूरे जीवन मेहनत की तुम्हें यहां तक लाने के लिए, ना घूमी ना फिरी ना रिश्तेदारों के घर गई, जब भी छुट्टी लिया तुम्हारे एग्जाम्स और पढ़ाई के लिए, अपने शौक कभी पूरे नहीं किए बेटा। अब एक नया बंधन? ना ना, मैं नहीं रहूंगी और मैं नहीं चाहती इस बंधन में फंसना। जल्द भारत लौटूंगी और तुम लोगों से, प्रभु से एक प्रार्थना करूंगी कि तुम लोग दोनों खुश रहो। नम्रता और कार्तिक अपने देश आकर बहुत खुश हुए। उसने सबसे पहले एक सूची बनाई। दोनों की अपनी अपनी रुचि है, किसी को संगीत सुनना तो नम्रता को किताब पढ़ना। नम्रता अपने कमरे के कोने में एक टेबल और कुर्सी लगाई जहां वो अपनी मनचाही किताबें पढ़ सके। सारे किताबों को झाड़ पोछकर फिर से सजाया मानो घर में भी एक छोटा सा पुस्तकालय हो। अपने ही कॉलोनी में एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली जहां सारे रिटायर साथी इकट्ठा होते थे, और देखते देखते इस तरह एक नया परिवार बन गया जहां साहित्य और संगीत का मिलन हो, वहां घना छाया खुद ब खुद मिल जाता है। नम्रता की रचनात्मकता से सभी प्रभावित हुए। एक दिन मिसेस दास आखिर पूछ ही ली, बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, बेफिक्र।

0: होकर कहें, रिटायरमेंट के बाद भी आप इतनी खुश रहती हैं, दिन बोझिल नहीं होता? उसकी मना स्थिति को नम्रता ने भांप ली और हंसकर कहा कि अभी तो एक अध्याय पूरा हुआ है, कई सपने हैं, कई आकांक्षाएं हैं, अब वो पूरा करूंगी। सच, मिसेस दास ने कहा कि ऐसी दोस्त पाकर मैं तो धन्य हो गई और जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो बहनों, अभी आपने सुनी गीतों भरी कहानी पुनर्नवा। आलेख एवं वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी शिल्पी की थी, जो आपसे अभी मुखातिब हैं। और इसी वादे के साथ अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपको बता दूं कि आज कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की और कार्यक्रम के सफर में आपकी सखी शिल्पी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: गृह लक्ष्मी
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण। कार्यक्रम में आज वार्ता होगी जलवायु परिवर्तन, चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार हैं अलका चंद्रा, प्रस्तुति है सहयोग है अवधेश कुमार की, प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: लीजिए प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। आज इसके अंतर्गत सुनेंगे वार्ता जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार हैं अलका चंद्रा।
1: पृथ्वी जीव मंडल का वह भाग है जो कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से मिलकर बना है। पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध होता है। जीव मंडल में पर्यावरण के दो घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। आज की हमारी जो शैक्षणिक वार्ता है वह पर्यावरण के अजैविक घटक से संबंधित है। इस शैक्षणिक वार्ता का मुख्य विषय है जलवायु परिवर्तन चुनौतियां एवं समाधान। यह के विषय केवल पर्यावरण से जुड़ा नहीं है बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधा संबंध रखता है। तो आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि जलवायु क्या है। जलवायु अर्थात क्लाइमेट किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 30 वर्ष या उससे भी अधिक के औसत मौसम की स्थिति को कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र में कई वर्षों तक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की दिशा और गति आदि का जो सामान्य पैटर्न रहता है वही उसकी जलवायु कहलाता है। अब हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा के पैटर्न, हवा की गति और मौसम की प्रकृति में दीर्घकालिक परिवर्तन होना। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी इत्यादि के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। इन गैसों के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है जिसे वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन का संकेत है। अब हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के मुख्य कारण क्या हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह वह प्रक्रिया है जिससे किसी देश या क्षेत्र में हस्तशिल्प और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से मशीन आधारित उद्योगों को की ओर परिवर्तन होना। कारखानों से निकलने वाला धुआं वातावरण में कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन का

0: कारण है वनों की कटाई, डीफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और पत्तियां भोजन बनाती हैं, परंतु वनों की कटाई करने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन संतुलन बिगड़ता है। इस तरह जलवायु परिवर्तन पर गहरा और सीधा प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन का तीसरा कारण है वाहनों की बढ़ती संख्या। पेट्रोल और डीजल के जलने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, शहरी तापमान में वृद्धि होती है और वाहनों की बढ़ती संख्या से जीवाश्म ईंधनों की खपत बढ़ जाती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण है ऊर्जा का अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग करना, जैसे एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बिजली का अत्यधिक उपयोग करने से पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होता है। जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावाद भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या बढ़ने से भोजन, जल, ऊर्जा, आवास और परिवहन की मांग बढ़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए अधिक उद्योग, बिजली उत्पादन और वाहन उपयोग बढ़ता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। अब हम चलते हैं हमारे विषय के दूसरे बिंदु पर और वह है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ। जलवायु परिवर्तन की प्रमुख चुनौतियों में से एक है पर्यावरणीय चुनौतियाँ। जब पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ता है तो पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं। उदाहरण के लिए हिमालयास के कई हिमनदों का आकार लगातार घट रहा है। ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से जल समुद्रों में मिल जाता है, जिससे समुद्र स्तर बढ़ता है। यह तटीय क्षेत्रों के लिए भी गंभीर खतरा बन जाता है। असामान्य वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेत हैं और प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता यह दर्शाती है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली असंतुलित हो रही है। यह पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर गंभीर चुनौती बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि के क्षेत्र में भी देखा जाता है। असामान्य वर्षा और सूखा के कारण फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। गर्म और आर्द्र वातावरण में कीट का रोग तेजी से फैलते हैं, जिससे कि खाद्य संकट की संभावना बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन से तापमान, वर्षा और आर्द्रता के असामान्य बदलाव होते हैं। ये परिवर्तन सीधे मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक। वैश्विक तापमान बढ़ने से लू की घटनाएं बढ़ती हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छर गर्म और आर्द्र वातावरण में तेजी से पनपता है और बीमारियां बढ़ाता है। सूखा, बाढ़ एवं असामान्य वर्षा से फसल उत्पादन घटता है और खाद्यान्न की कमी होती है। पर्याप्त पोषण न मिलने से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में कुपोषण बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण, कृषि, मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी देश की अर्थव्यवस्था, विकास दर और आजीविका को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार आर्थिक समस्याएं स्वयं जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती बन जाती है। अब तक हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जलवायु परिवर्तन की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अतः अब हम इसके समाधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। विश्व के कई देश मिलकर तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख वैश्विक प्रयास इस प्रकार हैं। पहला, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992। इसकी स्थापना रियो डी जेनेरियो ने 1992 में किया था। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना। इसका सिद्धांत है समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व CBDR, मतलब सभी देश जिम्मेदार हैं पर विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक मानी गई है। इसके कार्य हैं सदस्य देशों की वार्षिक बैठक आयोजित करना COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दूसरा, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 में की गई थी। इसका कार्य है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी करना। IPCC की रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक नीतियां बनती हैं। हाल ही आकलन रिपोर्टों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। यह 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है विकसित देशों के लिए बाह्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तैयार करना। इसकी कमी यह है कि केवल विकसित देशों पर इसका दायित्व रहा, कुछ बड़े देश इसमें शामिल नहीं हुए। चौथा है पेरिस एग्रीमेंट 2015। पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है जिसे 12 दिसंबर 2015 को UNFCCC के अंतर्गत पेरिस फ्रांस में आयोजित COP 21 सम्मेलन में अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है, जैसे पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान सिर्फ वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सकता है, जैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, बिजली और पानी की बचत करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयोग करें, 3R को अपनाएं जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। विद्यालय स्तर पर भी हम पर्यावरण क्लब, इको क्लब की स्थापना कर, जल संरक्षण अभियान वाटर कंजर्वेशन चलाकर, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर एवं ऊर्जा बचत अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, कार्बन टैक्स और कड़े पर्यावरण कानून लाकर और हरित प्रौद्योगिकी का विकास कर चर्चा किए गए चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। यह हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक समस्या नहीं है, नैतिक समस्या भी है। हमारी जीवन शैली और आदतें पृथ्वी के भविष्य को निर्धारित करेंगी। यदि हम आज जागरूक होंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। उपरोक्त विषय का निष्कर्ष यही है कि पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। अतः श्रोताओं, हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण करेंगे, ऊर्जा की बचत करेंगे, स्वच्छ और हरित भारत बनाएंगे। पुनः मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार थी अलका चंद्रा। प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण। वार्ता थी जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार थी अलका चंद्रा। प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार की थी। प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। दोस्तों, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म लव स्टोरी के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। सुरों से संवारा है आरडी बर्मन ने और बोल है आनंद बख्शी के।

दोस्तों पंकज उदास के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत। रचना है आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है नाम।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ रुपए के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी, परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे थोड़ी देर बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। इसके बाद वे प्रदेश कोर कमेटी से विमर्श करेंगे और शाम को प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।
2: 2 दिन तक लगातार जो मंथन होगा, हम सबको कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से तजुर्बा भी बहुत है, तो उस तजुर्बा और पार्टी का की आइडियोलॉजी के अनुसार कैसे और हम सब आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा।
1: रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
3: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्प्रेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से 2-3 साल में कम्प्लीट होगी।
1: गिरिडीह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी है। उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 15 करोड़ रुपए से भव्य रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा।
4: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा उसरी नदी का जो संरक्षण और ये पर्यावरण का जो उसमें देख रहे होंगे स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध, और उसमें एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये 2 योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से चल रहा है।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।

0: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक के 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्यभर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। रामगढ़ जिले से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित 4 टन आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। उपायुक्त ऋतुराज ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले 4-5 वर्षों से यह योजना चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मेहनत से आज बेहतर फल मिल रहे हैं, जिसे वैश्विक बाजार तक पहुँचाया जा रहा है।
1: राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत हम लोगों ने 4 से 5 सालों से जो हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने किया है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे लोगों ने अपने एकड़ एकड़ की जमीनों में आम लगाया। आज वो उसका फल जो है देखने को हमें मिल रहा है, जिसमें कि हमारे रामगढ़ जिले के गाँव का आम कल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, दुबई के मार्केट में भेजा गया है। हम लोग और भी एजेंसी से बात कर रहे हैं जो इसको आगे अन्य देशों में भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: रांची के ऑड्री हाउस में जनगणना में पोस्ट कार्ड के ऐतिहासिक योगदान पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न दशकों के जनगणना से जुड़े पोस्ट कार्ड, डाक सामग्री और जागरूकता अभियानों को चलचित्र तथा चित्रों द्वारा दर्शाया गया, जो डिजिटल युग से पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाने का मुख्य माध्यम थे। फिल्म निर्माता मेघनाथ ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां नई पीढ़ी को पारंपरिक संचार साधनों के ऐतिहासिक योगदान से अवगत कराती हैं।
2: 50-70 साल पहले हमारे पास क्या था, अखबार भी कम था, एकमात्र पोस्ट ऑफिस था, घर गांव में जाता था कुछ चीज, तो कोई चीज को सबके पास पहुंचाने के लिए पोस्टल सर्विस ही एक अच्छा जरिया था। तो हमारे सरकार पोस्टल लिफाफा, पोस्ट कार्ड इसके ऊपर में लिख देते, देखो ये होने वाला है, आप आओ।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। खेल जगत में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। जापान अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय महिला टीम ने कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। झारखंड की संदीपा कुमारी बेस्ट प्लेयर चुनी गईं। घरेलू खेलों में झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। उधर पतरातू में 30 टीमों वाली भव्य छोटा नागपुर सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग का शुभारंभ हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित

परिणाम किया जारी। परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत। अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोस और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं आशा भोसले। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थी आशा भोसले। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार अब से बस कुछ ही देर में।

0: killed and 22 others injured when a vehicle carrying members of a family collided with a truck on the Firozpur-Fazilka road this morning. The victims, all members of the same family, were on their way to Bias to immerse the ashes of a deceased relative in the Bias River when the accident occurred. Many people reportedly died on the spot, while the injured were rushed to Firozpur Civil Hospital and Faridkot Medical College for treatment. Police sources told Akashvani that many injured remain serious. Delhi police has arrested a hotel cook in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed the lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on Air app. Welcome back. You're listening to Midday News. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. The members also gave their assessment of the impact of West Asia conflict on India and the world. The second edition of Mango Magic Festival, promotion and tasting event of Indian mangoes, was hosted in Seattle, United States today. Over 100 leading importers of Indian fruits, including senior leadership of US retailers like Costco, participated and tasted 7 premium varieties of Indian mangoes on display, including Alfonso and Kesar from Maharashtra, Banganpalli and Himayat from Andhra Pradesh, Langla and Dasari from Uttar Pradesh, and Ripe Rajapuri from Gujarat. More from our correspondent.
1: The Consulate General of India in Seattle initiated the introduction of Indian mangoes in July last year and partnered with various stakeholders both in India and the greater Seattle area with an attempt to bring new premium varieties of Indian mangoes to big retail stores like Costco for American consumers. These efforts received a significant boost following a meeting with Costco CEO in April this year, after which Bhagwa variety of pomegranates from Maharashtra were introduced at Costco stores in the region, subsequently followed by Kesar mangoes. Attending the Mango Festival, Vice President of Costco Wholesale, Bob Husky, said that they recently started selling Indian Kesar mangoes and they have been selling faster than they can bring them back in.
2: We have just started selling the Indian Kesar mangoes and they have been selling faster than we can bring them back in. So we are very happy to sell the mangoes and happy that we could be part of this mango celebration at the consulate today.
1: Washington Senator Manka Dhingra said that these relationships based on food make trade, economic, and business relationships really thrive.
3: It is such a pleasure for me to be here at Mango Magic with the Consul General to Seattle. These relationships that make trade, economics, business relationships really thrive.
1: Moreover, in his recent edition of Man Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi also spoke about the rich diversity of Indian mangoes and praised India's mango farmers for taking this journey from the village to the global market.
4: Aam ki ye yatra अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: India is currently the world's largest producer of mangoes with an annual output of over 26 million metric tons and more than 1,000 named varieties. Chirag Jha, Akashvani News, Delhi.
0: Mohsen Rezai, the military advisor to Iran's supreme leader Mujtaba Khamenei, has called on U.S. President Donald Trump to make decisions independently of Israel, stop the blockade in the Strait of Hormuz, and release Iran's frozen assets. In an interview with the television channel, Rezai said that the negotiations between the two sides are at a deadlock and Mr. Trump must break this deadlock. He further said that if the U.S. wants to reach an agreement with Iran, the release of frozen Iranian assets is a test that America must pass and the path will be opened. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have traveled to, transited through, or stayed in Congo, Uganda, or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business or student permits will still be allowed to enter the country but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the three countries within the previous 3 weeks. India Meteorological Department or IMD has issued a red color warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. Very heavy to heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East UP, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. The Met Department further said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, remaining parts of Goa, Tamil Nadu, southwest Bay of Bengal and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather has remained clear across most parts of Himachal Pradesh today, bringing relief to people. After the recent spell of hot weather, the pleasant change in weather has significantly eased daily life. A report.
5: In Himachal Pradesh, light snowfall was recorded yesterday at Rohtang and Kunjam passes in the tribal district of Lahul Spiti, while some areas also witnessed light rainfall. This change has made the weather pleasant, attracting a large number of tourists to various destinations across the state to enjoy the scenic conditions. Meanwhile, the Meteorological Department has issued a yellow alert for today for the districts of Chamba, Kangra and Kullu, warning of possible thunderstorms, hailstorms, rainfall and lightning. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The Board of Control for Cricket in India, BCCI, today announced Team India's 16-member T20 international squad for the tours of England and Ireland. Shreyas Iyer has been appointed as India's new T20I captain, replacing Surya Kumar Yadav. Moreover, Tilak Verma has been named as vice-captain. BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time, following his great IPL 2026 season scoring highest runs. Prince Yadav has also been added to the squad. The team was announced after a meeting of Team India's Men's Selection Committee, led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia, for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka, multi-day games, at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
6: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
7: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
8: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
6: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
9: With Nepal, we have an expansive agenda.
10: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है. इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं. इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी. हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं.
9: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल.
6: भारत के तीन दिन के

0: दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी

0: किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, कार्यक्रम जय भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, देश की सुरक्षा में तैनात हमारे फौजी भाई हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। जब भी देश पर कोई संकट या आपात स्थिति आती है तो उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं और उन्हें तुरंत अपने ड्यूटी स्थान पर लौटना पड़ता है। ऐसे में कई जवान छुट्टियों में अपने घर आए होते हैं और अचानक आदेश मिलने पर उन्हें बिना रिजर्वेशन के ही ट्रेन या बस से वापस लौटना पड़ता है।

दोस्तों, जब हमारे फौजी भाई अचानक से अपनी ड्यूटी पे लौटते हैं, इस स्थिति में अक्सर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती और वे ट्रेन की गेट, टॉयलेट या पास या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खड़े नजर आते हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे फौजी भाइयों को पूरा सम्मान दे। अगर आप यात्रा के दौरान किसी फौजी को इस तरह खड़ा देखें तो कृपया अपनी सीट का एक कोना उन्हें सम्मानपूर्वक बैठने के लिए दे दें। यानी यह न सिर्फ उनका हक है बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जो लोग हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं उन्हें हर जगह सम्मान और सुविधा मिले।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है.
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती आकाशवाणी के रांची केंद्र से. दोस्तों, फौजी भाई न सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि देश के भीतर भी आपदा या संकट के समय आगे बढ़कर मदद करते हैं. उनका जीवन अनुशासन, त्याग और सेवा का प्रतीक है. जब वे छुट्टी पर अपने परिवार के पास आते हैं तो वह समय उनके लिए बेहद कीमती होता है, लेकिन जब ड्यूटी का बुलावा आता है तो वे अपने परिवार को छोड़कर तुरंत देश सेवा के लिए निकल पड़ते हैं.

0: दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम जय भारती यहीं पे संपन्न होता है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के अपने दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा।
1: एक कार्यकर्ता से चल करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाला एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों के मन में काफी उत्सुकता है, काफी उत्साह है और यह यात्रा उनकी ऐतिहासिक होगी हम लोगों के लिए।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को देखते हुए वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड

0: मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता, संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सके।
1: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए। तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्प्रेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अगले 2-3 साल में कम्प्लीट होगी।
0: सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोली स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
2: मोटरसाइकिल पर ला करके अवैध गांजा की बिक्री की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि एक उड़ीसा के टांगर गांव बस्ती का दुलेसर अपार्ट है, वही इस क्षेत्र में गांजा के अवैध आपूर्ति करता। इस तरह 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है एवं लगभग 36 केजी गांजा बरामद।
0: जापान के काका मिगाहारा में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया। मैच में शानदार खेल दिखाने वाली संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इधर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में खूंटी के आशीष तानीपूर्ति ने लगातार 3 गोल दागकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आ गले लग जाके इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर है किशोर कुमार के और बोल हैं साहिर लुधियानवी के। धुन बनाई है आरडी वर्मन ने।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब,

0: मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म आनंद से, जिसे गाया है मन्ना डे ने, संगीतकार हैं सलील चौधरी और रचना है योगेश।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो हम सफर अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हम दिल दे चुके शनम के इस प्यार से गीत के साथ। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीतकार है इस्माइल दरबार और गीतकार है महबूब।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, धुन बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में। धुन बनाई है आनंद मिलन ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मन से, जिसे गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने, संगीत दिया है संजीव दर्शन ने और रचना है समीर की।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में। संगीतकार हैं राम लक्ष्मण, रचना है देव कोहली की। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोल स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। इसके

साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है जीवन में सकारात्मक सोच रखें, अपने बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करें। भेंट वार्ता सर्वाइकल कैंसर भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रानू कुमार, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल हैं।

नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भेंट वार्ता सुनेंगे और साथ ही साथ सदाबहार गानों का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं ना हमारे साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विचारों का विशेष महत्व होता है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। सकारात्मक सोच जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है। वह व्यक्ति को निराश और भय से दूर रखकर आशा और उत्साह से भर देती है। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा युग में सकारात्मक सोच ही आवश्यकता पहले से कहीं और अधिक हो गई है। वास्तव में सकारात्मक सोच ही सफलता और सुखी जीवन का आधारशिला है। तो आइए, एक खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं, जीवन में सकारात्मक सोच रखे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार बनता है। सकारात्मक सोच जीवन को नई दिशा देती है और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच को सफलता और सुखी जीवन की कुंजी माना जाता है। साथियों, सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम समस्याओं को नज़रअंदाज करें, बल्कि उसका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करें। सकारात्मक व्यक्ति कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। वह निराशा और असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आज के समय में जीवन अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और समाज से जुड़ी अनेक जिम्मेदारियां व्यक्ति को तनावग्रस्त बना सकती है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच मानसिक शक्ति प्रदान करती है। यह तनाव को कम करती है और मन को शांत रखती है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करता है, क्योंकि उसके व्यवहार में विनम्रता, सहयोग और आशावाद झलकता है। साथियों, सकारात्मक सोच सफलता प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। असफलताओं से घबराने के बजाय उन्होंने सफलता की सीढ़ी बनाया। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मित्रों, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। प्रतिदिन अच्छे विचार पढ़ना, योग और ध्यान करना, अच्छे लोगों की संगति में रहना तथा अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना सकारात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही नकारात्मक बातों और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मित्रों, सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज पर भी पड़ता है। सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करता है और अपने आसपास खुशियों का वातावरण बनाता है। ऐसे लोग समाज में सौहार्द, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हैं। अंततः सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें

0: कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। याद रखें, जहाँ सकारात्मक सोच होती है, वहाँ सफलता, सुख और संतोष स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। दोस्तों, आजकल के लिविंग स्टाइल, खान पान और शारीरिक व्यायाम में बदलाव के कारण मनुष्य अनेक रोगों से घिरता जा रहा है। यदि हम किसी भी बीमारियों का नजरअंदाज करते हैं और सही समय पर इसका इलाज नहीं कराते हैं, तो यह बीमारी हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ बीमारियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। यह बीमारी तब होती है जब शरीर की कोशिकाओं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और गुना होते चली जाती है। तो मित्रों, आइए सर्वाइकल कैंसर बीमारी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है सर्वाइकल कैंसर रोग विशेषज्ञ और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, आजकल के समय में एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, इससे बहुत सारी महिलाएं ग्रसित हो जा रही हैं। ये सर्वाइकल कैंसर क्यों हो जा रहा है? क्या हमारी बिगड़ती लाइफ स्टाइल है? क्या हमारा खान पान है? कौन कौन से तत्व इस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं? और सर्वाइकल कैंसर का सही प्रकार से हमें मालूम पड़ जाए क्या इसके लक्षण हैं, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और इसका बचाव कैसे करें, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर रानू कुमारी। रानू कुमारी जी, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: रानू जी, ये सर्वाइकल कैंसर आजकल काफी बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह की बीमारी है और ये क्यों हो जा रहा है इतना?
2: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय का निचला भाग, जो कि योनि से जुड़ा होता है, उसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल कहा जाता है। इसी भाग में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में यह एक बहुत आम कैंसर है। दुख की बात यह है कि अधिकांश महिलाएं तब डॉक्टर के पास पहुंचती हैं जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इस कैंसर को समय रहते रोका जा सकता है। यह संक्रमण बहुत सामान्य है और कई बार शरीर खुद ही इसे खत्म कर देता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है, जिससे धीरे धीरे कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं में खतरा अधिक इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी शादी अगर कम उम्र में कर दी जाए, या शारीरिक संबंध बार बार गर्भ धारण करने की वजह से, या साफ सफाई की कमी से अगर वो महिलाएं धूम्रपान करती हों, या उनकी इम्यूनिटी या कमजोर प्रतिरोधक क्षमता है, या लंबे समय तक HPV इन्फेक्शन, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि इसका मुख्य कारण है, उससे ग्रस्त हो।
1: तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं, ताकि हम समय रहते सावधान हो जाएं और इसका इलाज हम शुरू करवा दें? क्योंकि यदि इस तरह की बीमारी को हम इग्नोर करते हैं, लक्षण दिखता है और लक्षण को यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो बीमारी विकराल रूप धारण कर लेगी और फिर आप जानते ही हैं कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है।
2: शुरुआती अवस्था में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, यही कारण है कि स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। कुछ महिलाओं में ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स के बीच खून आना, या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना, या मेनोपॉज, जो कि आपकी मानसिक बंद हो गई हो उसके बाद भी कभी कभी ब्लीडिंग दिखना, या दुर्गयुत डिस्चार्ज होना, या कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये सारे लक्षण को हम पकड़ के डॉक्टर को अगर हम टेस्ट के लिए बोले तो हम इसे इनिशियल या शुरुआती में ये बीमारी को पकड़ सकते हैं
1: जी। ये प्रायः किस उम्र की महिलाओं को ज़्यादा घेर लेता है?
2: ये शादीशुदा महिलाएं हैं जिनमें ज़्यादा शारीरिक संबंध, या जो सेक्सुअली एक्टिव जो महिलाएं होती हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, जिनकी इम्यूनिटी भी कम हो।
1: तो इसकी जांचें किस प्रकार की जाती हैं और इसका इलाज का तरीका क्या है?
2: खास तौर पे हम इस केस में पैप स्मियर करते हैं। पैप स्मियर क्या होता है कि यह एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण जांच है। इसमें जो हमारी सर्विक्स का जो पार्ट है, जो निचला हिस्सा है हमारे, उससे हल्के से कुछ सेल्स लिए जाते हैं और माइक्रोस्कोप के से हम उसे जांच करते हैं कि कहीं कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है उस सेल्स में। यह जांच बहुत कम समय में ही हो जाता है और सामान्य दर्द रहित होता है। अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैंसर बनने से पहले

0: में ही बीमारी पकड़ी जा सकती है। इसे हम यूजुअली सामान्यतः हम 21 वर्ष की उम्र के बाद या शादी के कुछ वर्षों बाद महिलाओं की स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर 3 से 5 साल के बीच अंतराल ये जांच करनी चाहिए।
1: कुछ अंतराल पर हर महिलाओं को अपनी ये जांचें करवा लेनी चाहिए ताकि सतर्कता ही सबसे बड़ा इसका इलाज
0: जी,
1: है जी। कम खर्चों में जांचें हो जाती
0: हैं। कम खर्च में ये जांच हो जाती है और इसमें आपको एडमिट करने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से ये टेस्ट हो जाते हैं, तो इसमें ऐसे कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है।
1: यदि आरंभ में लक्षण दिख जाते हैं और जांचें में ये लग जाता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो इलाज में सुगमता आती है, इलाज में त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है।
0: जी, जब हम एज ए पैथोलॉजिस्ट हम जब ये सेल्स देखते हैं कि हाँ अगर किसी महिला के सेल्स में अगर कैंसर होने की संभावना है, अगर हमें वो पता चल रहा है, तो हम उसे रिपोर्टिंग के तौर पे हम विशेषज्ञ के थ्रू हम उनको भेजते हैं, जिससे कि वो पता करते हैं कि हाँ इसमें कैंसर होना कितना इनमें बढ़ चुका है या फिर ये कैंसर इनमें है या नहीं है,
1: उसी तरीके से फिर इलाज शुरू
0: किया जाता है।
1: जी मैडम, ये बीमारी से बचाव के लिए टीका भी लोग लगाते हैं और भारत सरकार की ओर से भी टीकाकरण अभियान चलाया गया है सर्वाइकल कैंसर की बीमारी को रोकने के लिए, तो ये कौन सा टीका लगाया जाता है और क्या सभी उम्र की महिलाएं टीका लगा सकती हैं?
0: हमारे सरकार ने यूजुअली जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर होता है, इसमें 2 ऐसे महत्वपूर्ण टीका हैं जो कि है सर्वैरिक्स और गार्डेसिल। सर्वैरिक्स जो है वो महिलाओं में ही लगाए जाते हैं जिनमें कि वो 9 साल से 25 साल की उम्र में हम ये टीका लगा सकते हैं और ये टीका 3 डोजेस में अंतराल में लगाए जा सकते हैं। बात करें गार्डेसिल की, तो गार्डेसिल में भी 2 टीकों में ये इसके डिवीजन है, गार्डेसिल 4 और गार्डेसिल 9, जिसमें गार्डेसिल 9 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हम ये गार्डेसिल टीका लड़कों और लड़कियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्वैरिक्स में सिर्फ लड़कियों में ही ये टीका लगाते हैं। गार्डेसिल 4 नाम इसलिए हम देते हैं क्योंकि ये कम जो वेरियंट है, जो वेराइटी है HPV इन्फेक्शन के, उनको पकड़ता है, लेकिन जो गार्डेसिल 9 है वो 9 अलग अलग वेरिएंट को गार्डेसिल ट्रीट करता है, तो गार्डेसिल 9 लगाना मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभदायक होगा।
1: और ये टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है सरकार की ओर से या कहीं हम अलग से भी लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ खर्च हमें लगते हैं?
0: ये किसी किसी अस्पताल में निःशुल्क होते हैं और किसी किसी अस्पताल में वो थोड़े अपने चार्ज ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये निःशुल्क ही है।
1: और किस उम्र की महिला इसको लगाएंगे?
0: मैंने जैसे बात किया, ये सर्वैरिक्स और गार्डेसिल 9 साल की लड़कियों से 45 साल की महिलाओं तक में लगाया जा सकता है
1: जी।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उनकी शादी हुई है तभी उनको देना है, आप 9 साल की उम्र में भी टीका लगा सकते हैं।
1: एक बार ही लगा सकते हैं?
0: एक बार लगाना है, लेकिन उनके डोजेस अंतराल 3 ऐसे डोजेस में लगाने होते हैं। जैसे गार्डेसिल जो आपके 9 है वो 2 डोज में लगा सकते हैं, एक तो जब आपको पता चलता है और उसके बाद 6 महीने बाद फिर से, और अगर 9 से 14 साल में गार्डेसिल का वैक्सीन हमने लगाया है तो हमें दूसरे डोज है 15 से 45 साल में। अगर 9 से 14 साल में आपके वो डोज छूट गई है तो आपको अगर पता चल रहा है कि हमें ये वैक्सीन लेना है तो 15 से 45 साल में हम ले सकते हैं ये वैक्सीन, लेकिन हमें वो जो डोज लगाना है वो 3 डोज में लगाना है, एक तो जब हमें पता चल रहा है कि हाँ आज हमें वैक्सीन लगाना है, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, 3 डोज पे।
1: और ये वैक्सीन जैसा आपने बता रहे हैं 9 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाएं इसको लगा लेती हैं, तो इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, बचा सकती हैं और सेहतमंद रह सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं इस तरह के जो लक्षण दिखते हैं उसको इग्नोर कर जाती हैं, इग्नोर करते जाती हैं और फिर बीमारी बढ़ती जाती है, और महिलाएं अक्सर घर के कामों में व्यस्त होती हैं और इन बातों को इग्नोर कर जाती हैं, तो क्या कहेंगे हमारी माताओं, बहनों या जो लड़कियां हैं, जो नव युवतियाँ हैं, 9 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
0: हमारे समाज में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे रखती हैं, क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारियों में वो अपनी जांच और इलाज को टालती रहती है। लेकिन याद हमें ये रखना चाहिए कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है, पर हमें समय पर स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। पैप स्मियर एक सरल जांच है और सुरक्षित जांच है, जिसमें कि पेशेंट को एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है। और कई महिलाएं शर्म या डर से ये टेस्ट नहीं करवाती हैं, बट मुझे ये बोलना है कि आप इसमें इससे डरिए मत, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें।
1: तो यदि आप जागरूक होते हैं, सजग होते हैं और इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं, तो आप देर नहीं कीजिए, तुरंत पैप स्मियर टेस्ट है आप करवा लें, और ये हर जगह उपलब्ध है, और बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक अपने आगे की भविष्य की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानू कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और सर्वाइकल कैंसर और उसके बचाव पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, रोज की बात ही, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार का भी ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार
2: दोस्तों, जीवन शैली में बड़ी परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर लेकिन काफी हद तक रोके जाने वाली बीमारी है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज रहना चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा संगीत का रंग देते हुए आइए सुनते हैं एक सदाबहार गाना।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्यामत से क्यामत तक का यह गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। दोस्तों, यह गीत सुनने के बाद आशा करते हैं कि यह गीत आपको खूब पसंद आया होगा। दोस्तों, जीवन में बिताया हुआ कुछ यादगार पल हमेशा ज़हन में स्मरण में रहता है, इसलिए हमें अपने दैनिक जीवनचर्या से कुछ समय निकालकर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों के साथ हमेशा समय व्यतीत करना चाहिए। और आइए एक और खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करें। मित्रों, बच्चे किसी भी परिवार की सबसे अनमोल धरोहर होते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान पूरे घर में खुशियां बिखेर देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन बच्चों के साथ बिताया गया समय उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के साथ अच्छे और यादगार पल अवश्य व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, बच्चे की महंगे खिलौने या सुविधाओं से अधिक अपने माता पिता का प्यार और समय चाहिए होता है। जब माता पिता बच्चों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तब बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। वह स्वयं को सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के साथ अच्छे पल बिताने के अनेक तरीके हैं। माता पिता उनके साथ खेल सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं, पार्क में घूमने जा सकते हैं या परिवार के साथ भोजन बनाकर उनका आनंद ले सकते हैं। पढ़ाई के समय उनका मार्गदर्शन करना, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहना करना भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे क्षण बच्चों के मन में जीवन भर के लिए सुंदर यादें छोड़ जाता है। साथियों, आज मोबाइल फोन, टेलीविजन और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार माता पिता और बच्चों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि माता पिता कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। इससे परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी समझ बढ़ती है। बच्चों के

हर माता पिता की जिम्मेदारी और आवश्यकता है। धन और सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन बच्चों को में संस्कार, आत्मविश्वास और स्नेह केवल परिवार से ही मिल सकता है। इसलिए हमें अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर बच्चों के साथ हंसना, खेलना और बातचीत करना चाहिए। यही पल उनके उज्जवल भविष्य और परिवार की खुशहाली की मजबूत नींव बनते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांस सरगम। शाम 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा मदर इंडिया से मुन्ना भाई तक सुनील दत्त के कालजयी किरदार जयंती, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, गर्मी में कामकाजी भाइयों और बहनों के लिए जरूरी स्वास्थ्य टिप्स एवं अपना घर अपना स्वाभिमान प्रधानमंत्री आवास योजना। शाम 6 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

6:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा कृषि यंत्रों का रखरखाव। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा फिजूल खर्ची से बचें। साथ ही आप सुन सकेंगे कुरमाली वार्ता, कर्म ही पूजा है। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वृंदावन महतो एवं प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुन सकेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर होंगे हो लोकगीत, कलाकार होंगे यशमती तियो एवं साथी। 7:20 पर होगा क्षेत्रीय समाचार नागपुरी, उराव, मुंडारी, हो एवं संताली भाषा में। सात बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार ध्वनि चित्र। रात्रि 8:00 होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे

विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से, एवं रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव की ये सभा समाप्त हो जाएगी। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम सांस सरगम बस थोड़ी ही देर में, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म कहो ना प्यार है से, स्वर उदित नारायण एवं अलका याग्निक के।

कहो ना प्यार है, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत उदित नारायण एवं अलका याग्निक के सुरों में, शब्द रचना इब्राहिम अशकी एवं संगीत राजेश रोशन का। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिल्ली 6 से, स्वर मोहित चौहान का।

0: डेली सिक से आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत मोहित चौहान के स्वर में, शब्द रचना प्रसन्न जोशी की एवं संगीत AR रहमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म आजा नचले से, स्वर सोनू निगम एवं श्रेया घोषाल का।
1: चल होए, चल, जरा शोरू

श्रेया घोषाल एवं सोनू निगम के स्वर में आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत आजा नचले फिल्म से। शब्द रचना जयदीप शानी की एवं संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत बजरंगी भाईजान से।

नीलेश मिश्रा का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। राहत फतेह अली खां एवं रेखा भारद्वाज के स्वर में फिल्म बजरंगी भाईजान से, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अजब प्रेम की गजब कहानी से।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से कैलाश खेर के स्वर में, शब्द रचना इरशाद कामिल की एवं संगीत प्रीतम का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। शाम के 5 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पिनी हातिरकी समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05

खिड़क पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भूले बिछड़े गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें आज चर्चा होगी बरसाती मक्का की खेती। होलों की सुनिएगा अमरनाथ सामड़ और साथियों के स्वर में। एक और उड़िया लोकगीत होगा जितेंद्र प्रधान और साथियों के स्वर में। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर सुनिए बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर होगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:10 पर होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय होगा युवा शक्ति, विशेषज्ञ मनसुख मांडविया, युवा मामले और खेल मंत्री।

7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम। 8 बजे होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनिए आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 बजे हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना हमने लिया है फिल्म कसमे वादे से। गायक लगा रहे किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना फिल्म सफ़र का ये नगमा, आवाज़ें थी किशोर कुमार की। कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं फिल्म सजा का गाना, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मणिगोप और
1: सुनीता हांसदा का
0: जोहार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। सुनीता जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद आशा जी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी किसान भाई बहन इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो आशा जी, समय को ना गंवाते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। और जिस तरह से आशा जी हम हर बार किसी न किसी विषय को लेकर के कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं चर्चा से, तो आज का चर्चा का विषय क्या है?
0: बरसाती मक्का की खेती। सुनीता जी, हमारे किसान भाई बहन अभी इस मौसम में बरसाती मक्का की खेती के लिए अपने खेत की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह गहरी जुताई करें, फिर उसके बाद गोबर की खाद, जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे किसान भाई बहन सुनीता जी याद ध्यान रखें कि रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करें।
1: बिल्कुल,
0: रासायनिक खाद के प्रयोग से फसल का बढ़वार तो अच्छा होता है लेकिन उससे नुकसान भी पहुँचता है मिट्टी को।
1: बिल्कुल। और अगर हम हमारे फसलों की बात करें, जैसे कि बरसाती मक्का को ही लीजिए, अगर हम इसकी भी खेती अब से अगर शुरुआत करते हैं तो जैसे आपने कहा कि पहले मिट्टी को अच्छी तरह से जोत ले ताकि वो पूरी तरह से भुरभुरा हो।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि मक्का के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होते हैं वो थोड़ी सी जो है नाजुक होते हैं, और अगर हमारा मिट्टी जो है बहुत कठोर रहे तो उससे जो पौधे की जो जड़ें होती है वो अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ नहीं पाती है, और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारे पौधे जो है गिर जाते हैं, और इससे क्या है मिट्टी के में पोषक तत्व जो मौजूद होते हैं वो पौधों को नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले अगर आप मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं तो उसे अच्छी तरह से भुरभुरा कर ले, और इसके बाद जो हमारा जैविक खाद होता है, आमतौर पर अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान

0: भाई बहन गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो गोबर खाद को आप खेत जुताई के समय ही अगर आप दे देते हैं तो वो मिट्टी में पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल जाता है और सभी तरह वो फैल जाता है। और उसके बाद अगर हम नर्सरी पौधा तैयार करके लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि अगर हम जिस जगह नर्सरी कर रहे हैं मक्के की खेती की, तो वो जगह भी भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पौधा छोटा ही रहता है जब हम निकालते हैं उसे अलग अलग जगहों पे लगाते हैं तो वो आसानी से निकल सके मिट्टी के साथ, अगर वो निकलता है तो हमारी जड़ें सूखती नहीं हैं जल्दी से, वो जिस जगह हम अगर उनको रोपते हैं हमारे तैयार किए गए पौधों को। और अगर हम इस तरह से जो है छीट के जो हमारे जो है बीजों को छीट के अगर हम लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि पौधे इधर उधर एक दो बीज जो है एक साथ निकल जाते हैं, तो उसमें भी हम पौधों को अलग अलग कर सके, इसके लिए भी मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सुनीता जी, और इसके साथ ही बुआई से पहले हमारे किसान भाई बहन यहाँ ध्यान रखें कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है, तो उसकी जांच भी बहुत ही ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगा तो पौधा भी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: और इससे जो फसलों का उत्पादन है वह भी अच्छा होगा। सुनीता जी, अगर हम देखें तो कृषि में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मिट्टी से ही हम सभी तरह के खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर हम मक्के की खेती करेंगे, सिर्फ मक्के की ही खेती नहीं, जो भी फसल अगर हम लगाते हैं, अभी जिस तरह से अगर आप कहें तो बरसाती मक्का के लिए अभी से पौधा अगर हमारा तैयार होता है तो ये मौसम अभी गर्मी से बढ़ आगे निकल करके बरसात का ही होने वाला है, तब तक ये फसल जो है हमारा तैयार रहेगा और वो बरसाती के समय में भी जो है अपने पौधों को मजबूती से रख सकेगा। इसके लिए अगर हम घर में ही अगर बीज तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें जो सबसे ज़रूरी होती है कि बीज उपचार, हमारे पास अगर फसल के बीज पहले से है तो उनको हम उपचारित कर लेंगे। कि इसके लिए क्या होता है कि जितने भी बीज होते हैं उनको कुछ देर जो है पानी में डाला जाता है ताकि जो बीज ऊपर तैरते हैं, यानी वो बीज हमारा सही बीज नहीं होता है, तो उस तरह से हम अच्छे बीज को निकाल के छांट सकते हैं और उसका हम एक तरह से उपचार भी कर सकते हैं। उपचार करने के लिए होते हैं कि अगर हमारा बीज अगर मिट्टी में हम डालते हैं तो कीड़े, जो भी कीड़े होते हैं, दीमक होती है, मिट्टी में रहते हैं, तो वो हमारे बीजों को ना खाए, इससे इसके लिए हम जो नीम के तेल वगैरह होते हैं उनसे हम बीजों का उपचार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सुनीता जी, और हमारे किसान भाई बहन अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और कृषि करते हैं तो जो फसल है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा।
0: बिल्कुल, और सभी किसान भाइयों को कोई भी फसल लगाने से पहले अपने बीजों का उपचार जरूर कर लेना चाहिए। अगर घर में अगर आपके बीज नहीं है और आप बाहर से कहीं से लाते हैं तो उपचारित किए हुए बीज का ही इस्तेमाल
1: करेंगे, प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल, तो आशा जी चर्चा हम करते रहेंगे और अब समय हो चला है, जिस तरह से हमारे किसान भाई बहन इंतज़ार करते हैं लोकगीतों का, थोड़ा मनोरंजन का, तो हम उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए सुनवाते हैं अमरनाथ सामड और साथियों के स्वर में ये हो लोकगीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।

0: मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
1: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
2: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
3: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
4: कार्यक्रम किसानवाणी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं स्वास्थ्य मृदा समृद्ध किसान। इस विषय में जानकारी दे रही हैं बनमाली तामसोय और उनसे बातचीत कर रही हैं सुनीता हास्ता।
5: सभी किसान भाइयों और बहनों को सुनीता हास्ता का जोहार। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ नई जानकारियों के साथ और आज हम किसान भाइयों के लिए जानेंगे कि वो कम समय में या फिर अधिक उपज वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस विषय में हमारे साथ इसकी जानकारी देने के लिए उपस्थित है हमारे एक प्रशिक्षित युवा कृषक मित्र। तो आइए जानते हैं उनका परिचय और उनसे जानेंगे कि किस तरह से हमारे किसान भाई अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय।
6: मेरे और से सभी किसान भाइयों को जोहार। मेरा परिचय है बनमाली थमसे। तो अभी जानेंगे हम लोग कि किसान भाई लोग अधिक उपज कैसे प्राप्त करेंगे।
5: जी, तो सबसे पहले बनमाली जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपने कहा कि आप हमें बताने वाले हैं कि हमारे किसान भाई अधिक उपज कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
6: बिल्कुल, देखिए किसान भाई लोग खेती करते हैं सभी लोग। पूर्वजों से प्राचीन काल से हम लोग का खेती का परंपरा चलते आ रहा है। लेकिन अब बहुत सारे रासायनिक खादों का निर्माण वैज्ञानिकों ने कर चुका है कि एक दिन में दो दिन में इतना ज़्यादा ग्रो कर देते हैं, उससे बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी निकलता है। बल्कि किसान भाई लोग इस चीज़ के बारे में कम जानकारी रखते हैं, बहुत कम लोग जानकारी, जिसके कारण मिट्टी का उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाता है, जिससे वहाँ से जो पौधा पनपते हैं उनमें ग्रोपन या फिर उपज बहुत कम मिलते हैं। तो इनके लिए विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी को हमेशा उर्वरक बनाए रखने के लिए, तो इसके लिए उर्वरक खादों का यानी कि रासायनिक खादों का सबसे ज़्यादा प्रयोग ना करके हम लोग अगर कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो देसी तरीके से, जो नेचुरल तरीके से जो कंपोस्ट तैयार करते हैं, अगर इस चीज़ से अगर खेती करेंगे उपज भी अधिक होगा और मिट्टी का उर्वरक हमेशा हमेशा बनाए रहेगा। तो इसके लिए हम लोग कंपोस्ट तैयार करने का विधि को पहले जानना पड़ेगा।
5: बिल्कुल।
6: हाँ,

0: इस कंपोस्ट विधि का नियम ये है कि आप अपने सुविधा अनुसार गड्ढा खोद लीजिए, या फिर आप हो सके तो अगर थोड़ा सा खर्चा में जाना चाहते हैं तो आप एक सीमेंट का एक क्या बोलेंगे इसको, गड्ढा कुछ बना लीजिए
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: सीमेंट से।
1: जी
0: उसके बाद उसमें गोबर रखिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर में पत्ता तोड़ लीजिए, कहीं से अगर हम लोग आसपास में घास उखाड़ते हैं उसको उस गोबर के ऊपर रखना है,
1: जी
0: फिर उस पत्ता या घास के ऊपर में फिर गोबर रखना है,
1: जी
0: फिर उसके ऊपर में फिर पत्ता सड़ा गला जो भी है, पत्ता हो गया, घास हो गया, या सब्जी का जो हम लोग काट करके जो
1: जी जी
0: तना तरफ
1: छिलका,
0: छोड़ देते
1: हाँ
0: छिलका,
1: बिल्कुल
0: उसको उसके ऊपर डाल दीजिए।
1: जी
0: इस तरह से आप नेचुरल चीज को आप उसके ऊपर डालते जाइए, उसके ऊपर फिर गोबर डालिए, उसके ऊपर फिर घास डालिए, इस तरह से डाल करके आपको जो गड्ढा किए उसको भर दीजिए।
1: बिल्कुल
0: उसके बाद एक सप्ताह बाद उस गड्ढा में फिर से दब जाएगा,
1: जी
0: सड़ेगा गलेगा
1: हम्म,
0: तो फिर से डाउन हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: फिर उसके ऊपर में फिर डाल दीजिए। इसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए गड्ढा को, छोड़ दीजिए, और उससे जो खाद बनेगा
1: हम्म,
0: उसी को हम लोग कंपोस्ट तैयार हो गया सोचते हैं, और उससे कुछ रस भी निकलता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हम लोग गोबर रखेंगे फिर घास रखेंगे
1: हाँ, तो वो सड़ेंगे फिर
0: सड़ेंगे
1: बिल्कुल,
0: गलेंगे, तो
1: हाँ
0: उससे जो एक रस निकलता है
1: जी
0: उस रस को हम लोग आर्क बोलते हैं, आर्क बोलते हैं।
1: बिल्कुल
0: और ये आर्क के उस पौधा या उस बागवानी के लिए एक प्रकार से दवा का काम करता है।
1: बिल्कुल
0: जैसे उस आर्क से अगर आप कीड़ा अगर लग रहे आपके साग में कुछ फलदार पौधा
1: वृक्ष
0: में
1: में बिल्कुल,
0: वृक्ष में,
1: हाँ
0: हाँ, तो उसमें उससे छिड़काव भी कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: उससे वो कीड़ा भाग जाएंगे ऑटोमेटिक,
1: बिल्कुल
0: मर भी सकते हैं उससे, वो
1: जी
0: बहुत अच्छा खाद हो जाता है, उससे किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होता, ना इंसान को होता है ना ही पौधा को होता है।
1: जी जी
0: जैसे उर्वरक खाद अगर प्रयोग करेंगे या कीटनाशक दवा प्रयोग करेंगे इससे तो इंसान का भी नुकसान होता है और पौधा का भी नुकसान होता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह से अगर रासायन अपना नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से आप अगर इस तरह से कंपोस्ट तैयार करके खेती करेंगे तो मिट्टी में किसी भी प्रकार का कमजोर नहीं पड़ेगा, मिट्टी हमेशा बनाए रहेगा,
1: जी
0: इससे आप कम जगह में कम समय में आप अच्छा से उपज दे सकते
1: दे
0: हैं।
1: सकते हैं
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्या कर सकते हैं, अपने जहाँ पे अगर हम मान लीजिए कोई फसल लगाए हैं तो
0: बिल्कुल।
1: वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
0: और उसमें कर सकते हैं कि हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं,
1: जी
0: और हम लोग जानते हैं कि गांव में इमली का गज, जैसे इमली का गज में वो छोटा छोटा पत्ता होते हैं,
1: जी जी
0: ऐसे ऐसे पत्ता को हम लोग, छोटा छोटा पत्ता होता है इसलिए वो पैदा है क्योंकि बड़ा पत्ता अगर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा,
1: जी जी
0: तो इमली पत्ता हो गया, नीम पत्ता हो गया, ऐसे ऐसे पत्तियों को कलेक्ट करके, ये सब क्या है कि पेड़ के नीचे जाएंगे जिस समय पत्तियां गिरती है
1: जी जी
0: उस समय झाड़ू करके किसी तरह से टोकरी में ले करके आप जिस जगह को आपका खेती करते हैं उस जगह में उस पत्तों को
1: फेंक
0: रखिए,
1: देंगे
0: फिर उसके ऊपर में हाल चला दीजिए,
1: जी
0: उसको अंदर दबने दीजिए,
1: जी
0: तो उसमें क्या होता है उर्वरक हमेशा मिट्टी बनाए रखता है।
1: जी
0: ये कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: उसके बाद और कर सकते हैं कि जितना भी हम लोग घास फूस सब तोड़ते हैं निकालते हैं उसको कर पतवार बोलते हैं, उसको हम लोग खेते में दबा देना चाहिए था।
1: जी
0: हाँ, उसको दबा देने से उसका उर्वरक शक्ति बनाए रखता है।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि खरपतवार एक तरह से जो हम लोग घास उस उखाड़ देते हैं वो सूख जाती है, सूखने के बाद अगर हम उसे मिट्टी में दबा दें तो
0: दबा
1: वो
0: देंगे तो
1: सड़ जाता
0: सड़
1: है,
0: जाता है,
1: बिल्कुल ये खाद बनता है।
0: बनता है।
1: तो वनमाली जी, अभी आपने जैविक खाद और रासायनिक खाद के बारे में बताया, लेकिन हमारे जैसे किसान भाई होते हैं वो कभी कभी है जल्दी उपज पाने के लिए रासायनिक खाद का भी बहुत
0: हाँ बिल्कुल,
1: इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों खाद के इस्तेमाल में क्या अंतर है, मतलब कैसे, मैंने क्या खाद हमें करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए और क्या नहीं
0: हाँ
1: लाना
0: बहुत
1: चाहिए?
0: ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा फायदा और ये दिखता है, अंतर दिखता है,
1: जी
0: क्योंकि हम लोग जो पूर्वजों को अगर देखेंगे तो एक शताब्दी से पार करते हैं,
1: जी
0: अभी के समय में देखिएगा 80 साल तो नहीं 50 साल हो जाता है तो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं और दवाई खा कर कर रहते हैं।
1: जी
0: इसका जो कारण है यही है, हम लोग मतलब केमिकल चीज़ें खाते हैं,
1: जी जी
0: तो इससे बचना और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हम लोग नेचुरल खादों का प्रयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि रासायनिक खाद में नुकसान क्या है कि एक तो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं, एक तो उम्र घटती है हमारी, उम्र
1: जी
0: घटती है मतलब कम समय में हम लोग को बीमारी पकड़ लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: देख रहे हैं जितना भी डायबिटीज शुगर उगर जितना भी बीमारी है कहीं ना कहीं केमिकलों के मिक्सिंग के कारण है ये सब दिखता है,
1: जी
0: तो बहुत सारे नुकसान हम लोग को तो नुकसान होता है, इंसान को,
1: जी
0: जानवरों को भी नुकसान होता है, साथ ही साथ मिट्टी को भी नुकसान होता है।

0: सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और ऑल पृथ्वी हमारा नुकसान हो जाता है, इसका मतलब मिट्टी नुकसान हो गया, इंसान नुकसान हो गया, जानवर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और रासायनिक खाद लगाते हैं मिट्टी में और बारिश होती है, और बारिश का पानी रासायनिक खाद में लगाया हुआ मिट्टी को साथ जाती है, और कहाँ मिलती है, नदियों में जाती है, कहीं कुओं में घुसता है, कहीं तालाबों में घुसता है पानी, तो वो रासायनिक यानी केमिकल पानी हो जाता है। वो जानवरों तो लेते ही है पानी, हम लोग कुआं से भी पानी लेते हैं, और ये जब भूमिगत जल बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, इसमें भी तो सोर्स बन जाते हैं ये पानी, तो ये पानी जाते फिर हम लोग पीते, तो वही रासायनिक मतलब खादों वाला पीते हैं यानी केमिकल वाला पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और हम लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल तरीके से जो खाद प्रयोग करते हैं हम लोग, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पत्ता, सड़ा गला पत्ता, गोबर का से बनाया हुआ, इससे किसी भी प्रकार का ना जानवर को नुकसान होती है, ना पानी को नुकसान होती है, ना इंसान को।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इनमें अंतर है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, और ये वाकई में हमारे किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि हम जितना अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए तो है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत जो है आगे चल करके दिक्कत देने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे किसान भाई चाहे तो जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। और बनमाली जी, एक जो है हमारे पास प्राकृतिक जो स्रोत होता है, जैसे हम लोग नीम की खली वगैरह भी करते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना क्या बहुत सही है या फिर क्या कहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मिर्चा हो गया या फिर कोई भी सब्जी उगाते हैं, उसमें कीड़ा लगना ही लगना है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी कीड़ा लगते हैं हम लोग देखते हैं। तो जब अब नीम का कली बोल रहे हैं, जो नीम का जो फल होता है उसको हम लोग तेल बनाते हैं, नीम तेल बोलते हैं, उसके द्वारा जो बचता है उसको बोलते हैं, हम लोग का लोकल भाषा में उसको नीम खाया बोलते हैं, हाँ लोकल भाषा में। तो इनका प्रयोग करने से बहुत बेनिफिट होता है, जैसे कि अब साग लगा दिए या फिर कोई भी अब बागवानी चीज कर दिए, उस मिट्टी में इनका छिड़काव करने से मिट्टी में भी कीड़ा पनपते हैं, उन कीड़ों से ये छुटकारा मिलता है।
1: जी,
0: इनका फायदा।
1: बिल्कुल, वनमाली जी एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि आप खेती करते हैं और अच्छे स्तर पर करते होंगे, तो खेत का तैयार आप कैसे, मतलब खेत को आप कैसे तैयार करते हैं? हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई भी जिन्हें सही तरह से खेत की तैयारी के बारे में ना जानकारी नहीं है, तो उनको आप बताइए कि कैसे आप करते हैं।
0: देखिए, जब आप एक ही स्थान पर सालों भर खेती करना चाहते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के सब्जी फसलों का उगाते हैं, तो उसके लिए आपको समय समय पर मिट्टी में चूना की छिड़काव जरूरी है, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल दीवार सबको पॉलिश करने पोछा करने के लिए, ऐसे चूना ले लेना है, और लगा देने के बाद उसको छिड़काव करने के बाद हल जोत दीजिएगा, वो दब जाएगा नीचे में, ऐसे में क्या होता है कि मिट्टी जो हल्का रहता है, ये एक प्रकार से आप मिट्टी को हमेशा बनाए रखने के लिए इसको करना पड़ता है। उसके बाद और एक है कि आप जब भी बागवानी का काम करेंगे, उसमें फसल उगाएंगे, तो आपको पहले उसको हल चला देना है, हल चलाने के बाद आपको छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए उसको, थोड़ा सा उसको धूप मिलने दीजिए उसमें, क्योंकि उसमें जो भी खरपतवार जो अब उखाड़ा हुआ रहता है उस कम से कम सूखे, और जो भी उसमें कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं वो भी मरे, कम से मर जाए। उसके करने के बाद क्या करना चाहिए कि आप अगर बड़े रूप में करना चाहते हैं तो उसके ऊपर में जैसे अभी अभी बोले खरपतवार घास हो गया, गोबर हो गया, इस चीज़ को छिड़काव करके फिर एक बार से हल जोत दीजिए, तो पूरी तरह से वो मिल जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा कि आपको उसमें कोई भी फसल उगा सकते हैं। उसके बाद अगर साग उगाना चाहते उसमें क्यारियां बनाने की जरूरत पड़ती है, अगर जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इसके लिए तो क्यारी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आड़ बना हुआ रहता है, हमारे खेत बना हुआ रहता है, तो उसमें ऑलरेडी आप चूना छिड़काव कर दिया, साल में एक बार कम से कम या दो साल में एक बार चूना का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं
1: मिट्टी, मतलब ये चूना का छिड़काव हम लोग जो भी हमारे कीड़े मकोड़े रहते होंगे
0: नहीं, मिट्टी को हल्का करने के लिए।
1: अच्छा,
0: चूना एक प्रकार, आप देखते होंगे कि कोई भी चूना को जब गलाते हैं हम लोग कैसे बहुत
1: ये पिघलने लगता है, उबलने लगता है।
0: हाँ, तो मिट्टी में अगर उस चीज रहेगा ना तो मिट्टी हमेशा हल्का रहता, फुसफुस रहता है, तो उसमें आराम से वो जो फसल का जड़ आराम से फैल सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो अगर हमारे किसान भाइयों को जानकारी इसकी नहीं थी तो बिल्कुल आपके इस जानकारी से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सच कहूँ तो बनवाली जी मुझे भी नहीं पता खादों में और किस तरह से हम किसी भी फसल को लगाने से पहले मिट्टी को कैसे तैयार करें। तो आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जोहार, धन्यवाद आपको।
2: किसान भाई बहनों, अभी हम जानकारी ले रहे थे स्वास्थ्य मृदा समृद्ध किसान, इस विषय में जानकारी

0: दे रहे थे बनमाली और उनसे बातचीत कर रही थी सुनीता हांसदा। किसान भाई बहनों, इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आशा मनी गोप और
1: सुनीता हांसदा को दीजिए विदा।
0: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत कुछ आपको हम जानकारी देंगे। खासकर अगर हम मौसम की बातें करें तो इस मौसम में मलेरिया का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। ऐसे में और हमारा क्षेत्र भी ऐसे कहा जाता है कि मलेरिया क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम कुछ बातें करते हैं कि मलेरिया से हम बचाव कैसे करेंगे। अपने परिवार को मलेरिया से बचाने के लिए मच्छरों की पैदावार रोकने के कुछ सरल उपाय हैं। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी से भरे गड्ढों में मिट्टी भर दें, घर में रखी हुई नाद या छत पर टंकी में एकत्रित पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इनको सप्ताह में एक बार खाली करके सुखाएं और हमेशा ढक कर रखें। ठहरे हुए पानी जैसे कुओं, तालाबों व अन्य जलाशयों में एक मछली है जो गम्बुजिया मछली कहा जाता है, उस

0: डालें। यह मछली मलेशियस फैलाने वाले मच्छर के लार्वा को खा जाती है। श्रोताओं, मच्छर के काटने से अपने को हम कैसे बचाएंगे? जी हाँ, तो आराम की नींद और मलेरिया व मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए सभी को, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी या मच्छर नाशक के इस्तेमाल के बिना घर के बाहर ना सोएं। घर के दरवाजे और खिड़कियों पर उपयुक्त जाली इस्तेमाल करें। निश्चित करें कि छिड़काव के समय घर के सभी कमरों और कमरों में इसका छिड़काव हो। छिड़काव के बाद कम से कम 3 महीने तक लिपाई, सफ़ेदी और रंग रोगन ना करें। घरों में छिड़काव के समय सहयोग करें। तो श्रोताओं, ये तो रही कुछ विशेष बातें मलेरिया से बचाव पर।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: ही नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नेहर में ना भले नुकन परिस्थिति रे भले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे मैं कहा कि हम भले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना रिया तो पाम ना रिया वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मैंने में उन्हीं उन्हीं ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तो मैं दुर्गम गई तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपी लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरेन का अले आया नु तुम ते ना आपी लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, पश्चिम सिंहभूम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम मिशन उदय पर अब हम कुछ जानकारी लेते हैं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जुझार मांझी जो पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन हैं। श्रोताओं, पश्चिम सिंहभूम में स्वास्थ्य सुविधा शहर के साथ साथ गांव-गांव में हर घर घर

0: और हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी जी ने एक कार्यक्रम चलाया है। ये है मिशन उदय। तो चलिए, ये मिशन उदय है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस तरह काम करेगा, इस पर हम कुछ जानकारी लेते हैं पश्चिम सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी जी से। तो सबसे पहले तो जोहार।
1: जोहार, मैं डॉक्टर जुझार माझी, सिविल सर्जन पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिले का स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित, सुदृढ़ और उत्तम बनाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पश्चिमी सिंहभूम के प्रयास से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में उपायुक्त महोदय के लीडरशिप पर पूरा स्वास्थ्य विभाग एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का नाम है मिशन उदय। मिशन उदय का फुल फॉर्म मैं कहूँ तो उलगुलान फॉर डिसेबिलिटी एनीमिया एंड एडोलसेंस यंग एडोलसेंस गर्ल्स, उसके साथ साथ गैर संचारी रोग को भी हम लोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 2 सप्ताह के लिए है। 1 तारीख से हम लोग ने इसको, 1 जून से हम लोग ने इसको शुरू किया है, 14 जून तक इसको चलना है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग ने ऐसे तय किया है कि सभी गांव में सहिया बहनें इन बीमारियों का, जैसे दिव्यांगता, कुपोषण, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, रक्ताल्पता, गैर संचारी रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि, लेप्रोसी, टीबी रोगी की हम लोग पहचान कर रहे हैं, और पहचान करके उसको सभी आंगनबाड़ी में CHO, NM और MPW कैंप कर रहे हैं। वहाँ सभी का अपना शिकायत के अनुसार जांच हो रहा है और दवा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग की मंशा एक ही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला एक तो बहुत बड़ी जिला है, लगभग 18 प्रखंड की जिला है, दुरुस्त एरिया भी है, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन भी है। तो एक अभियान हम लोग ने छेड़ा है कि एक बार में इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत सभी बीमारियों का खोज करके उसको आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य उपकेंद्र तक हम लोग लेके आए, वहाँ सभी का जांच हो और उपचार भी हो। कुछ बीमारियाँ ऐसे होगी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर तक पहुँचना होगा। दिव्यांगता की पहचान हम लोग ने इस तरह से कर रखा है, पहचान या तो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनका सर्टिफिकेट निकला होगा या नहीं निकला होगा। जिनका नहीं निकला है उनको हम लोगों का प्रयास है कि निर्धारित तिथि को सदर अस्पताल में उनको बुलाकर उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। कुपोषित बच्चे जो पहचान हो रहे हैं उनको ट्रांसपोर्टिंग करके अपना गाड़ी बेच के कुपोषण उपचार केंद्र तक पहुँचाएँ। दाग धब्बे वाले जो लेप्रोसी संभावित हो सकते हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्क्रूटनी करके उनको भी उपचार शुरू किया जाए। जो गर्भवती महिलाएँ हैं, एनीमिया से पीड़ित हैं, उनको तत्काल हम लोग 6 माह का आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी जो भी बीमारियां हैं, जैसे और बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है वो है मलेरिया। मलेरिया के लिए हम लोग ने एक स्पेशल अलग से अभियान चला रखा है। गांव-गांव में सैया बहनों के द्वारा उनको चिन्हित तो किया ही जा रहा है, हाट बाजार में भी हम लोग कैंप लगा रहे हैं और उसी जगह पर उनकी जाँच और उपचार हम लोग सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अब तक विगत 4 दिनों का आंकड़ा बहुत ही उत्साहवर्धक है। हम लोग के काफ़ी रोगी को हम लोग ने पहचान किया है, उपचार भी शुरू हो गया है और उम्मीद है हम लोग ये अभियान अगर सफल होता है, मुझे पूरा विश्वास है सफल होगा, तो एक अच्छा आंकड़ा निकल के आएगा, जिस आंकड़े के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं उपायुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जो पूरी ये मिशन उदय को नींव रखा। हर दिन इवनिंग में शाम को 7 बजे से इसका रिव्यू भी हो रहा है, कहीं अगर कमी मिल रहा है तो उसका अगले दिन उसका निदान खोजा जा रहा है। तो मुझे पूरा

0: विश्वास है उपायुक्त महोदय के लीडरशिप पर स्वास्थ्य विभाग एक नया पहल शुरू की है और आने वाले दिन इसका परिणाम नजर आएगा जो बेहतर होगा।
1: जिले के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जिले के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, हम लोग प्रयासरत हैं आपको स्वस्थ रखें, ऐसी व्यवस्था दें आपको इजी एक्सेस हो, अगर कोई भी बीमारी हो उसका उपचार जल्दी से त्वरित मिले। और दो बीमारियां जिसके बारे में स्पेशली बताना चाहता हूँ, एक एनीमिया, दूसरा मलेरिया, ये बड़ा समस्या है अपने ज़िले के लिए। किसी को भी बुखार हो तो आप अगल बगल के नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएं, आपका जांच और उपचार वो सुनिश्चित है। और एनीमिया है जो समस्या है, चाहे एडोलसेंस लड़की हो चाहे गर्भवती महिला हो, ये भी एक बड़ा समस्या है। सभी से अनुरोध और आग्रह होगा कि आप स्वास्थ्य केंद्र आएं, जांच कराएं और ये दो जो बड़े बीमारी हैं इससे मुक्त हों। और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो मुझे लगता है शायद उस तक नहीं है जो होना चाहिए लोगों में। अगर आपको स्वास्थ्य में कुछ कमी है, आवश्यक है, आप आए, आप डिमांड जनरेट करें, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी टीम आपकी सेवा में हर समय आगे रहेगी, आपको मदद करेगी।
1: आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
2: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
1: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
2: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
2: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
1: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।
3: तो श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद आइए कुछ और हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखभाल से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या फिर हम यूं कहें कि जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या फिर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है, जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहता है तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। श्रोताओं, अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। एक जरूरी बात मैं बता दूं कि इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर डॉट जीओवी डॉट आईएन पर।
3: हर

0: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्धजन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता अ ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील। कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजनों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं।
2: नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं। नक्सलवाद की जड़े इसी झारखंड में भी बहुत रूप से मजबूत थी, पर हमारे गृह मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हम नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करेंगे। आज जो उग्रवाद की घटनाएं होती थी, जिस प्रकार नक्सलवाद था, आज उसको पूरी तरह से समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की 1 सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं।
3: केंद्रीय अध्यक्ष सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करें।
4: हम अपनी पार्टी से वैद्यनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे।
1: इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता अ ट्राइबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति सामुदायिक जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ उसका गहरा संबंध राज्य की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय जीवन दर्शन जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण संदेश देता है। जामताड़ा जिले में SIR के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जागरूकता शिविर में आज विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए और मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को सफल बनाने की अपील की।
5: हम लोगों का आदमी सीधा है, तमाम विषयों के बारे में उतना सचेतन नहीं रहता, इसलिए हमारा संगठन तत्पर है। अगर SIR में नाम छूट जाएगा, मतदाता सूची से नाम हट जाएगा, इनको हम अपने मौलिक अधिकार को खो बैठे। इसलिए हमारा जो लड़ाई है, इस मौलिक अधिकार को बचाने का लड़ाई है, ताकि एक भी जग मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे।
1: सरायकेला खरसावां जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत बूथ लेवल अधिकारी के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक शिक्षिका और एक स्वास्थ्य सहिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गम्हरिया ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र भेजा है। अंचल अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि नियुक्त कर्मियों की ओर से दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने से मतदाता पुनरीक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका है। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य पारदर्शी तरीके से करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रविन्द्रनगर भवन में आयोजित शिविर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने SIR के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण किसान बागवानी को अपनी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहे हैं। एरेंडा गांव के आसपास ग्रामीण किसान इन दिनों आम तरबूज सहित अन्य कई फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
6: मनरेगा की तरफ से लगाए, पास हुआ, फिर आम लगाने के बाद हम लोग वहाँ ड्रिप सिस्टम से हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती भी किए, टमाटर का खेती भी किए, मान सारा खेती बाड़ी उसी में हम लोग तिवारी भी हो रहा है।
7: यहाँ पर ड्रिप सिस्टम से हम लोग खेती किए, तो वही से हम लोग शुरुआत किए और अभी इसी के कारण आम बागवानी भी अच्छा ही फल दे रहा है।
1: लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक में विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पहुंच पथ वाले टोलों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जुलाई माह तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाए और जहां पहुंच पथ उपलब्ध नहीं है वहां विशेष प्रकार के पोल एवं अन्य तकनीकी विकल्पों के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य किए जाएं। उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंता समन्वय स्थापित कर कार्य करें। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में डुमरी गिरिडीह पथ पर पिपराडीहा के ओवरब्रिज के समीप आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। मृतक पिता एवं पुत्र हैं, जबकि एक किशोरी समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पेड़ों के आसपास न रहें और सुरक्षित स्थानों में शरण लें। राज्य भर में जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भीषण गर्मी और जल संकट के कारण परेशान हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव चरकपानी के लोग डोभा का पानी पीने को विवश हैं। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरों के लिए भारतीय टी20 टीम की घोषणा की है। श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को क्रमशः कप्तान और उपकप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया है, उन्हें टीम में भी जगह नहीं मिली। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय सीनियर टीम में चुने गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्धजन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील। कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us 2 very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
9: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत @2047 है जी। उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
8: जी,
9: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
10: जी।
9: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमईज को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस्ड 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हुए हैं
10: जी।
9: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है जी, ये आजीविका के मामले हैं।
10: यस आदित्य जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड, यू नो, द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इन फैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज, एंड इंडिया लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड एमएसएम is are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
11: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the 4 pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government, we have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense, and sports. We just saw JEE advanced results come in and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading, not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children,

0: financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, so.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने लाइफ साइकिल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन उनके बर्थ से ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल,
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
2: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
2: yes.
1: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi hai. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain aur institutional deliveries 68% प्रतिशत से बढ़कर 90% से अधिक
2: 98.
1: हो गई है. जी
2: 98.
1: बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
2: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
1: जी,
2: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं.
1: जी जी,
2: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
2: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves

0: many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. And Modi ji jo baar baar kehte hain, swasth nari hi swasth rashtra ki janmadata hai. Aur swasth rashtra hi sashakt rashtra ban sakta hai. This is the linkage between women's health and the empowered और विकसित भारत, as we say, आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
1: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का, जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा. इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो. पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है.
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है. और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं. लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं, ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो. सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी.
2: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है. दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस

0: सिस्टम। देखिए, आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड हैं और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजिएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस most of the facilities, nothing better than that. That is almost best because अपने आप में movement या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी बेटर रेसिपी बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो like they are coming up now, but with that you also need later skills because skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time, and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together, and then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है विमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो है ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जो पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी और जो माहौल

0: अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं,
0: जी
1: 65%
0: जी
1: से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है। और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन। तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर? तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी? आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन अप यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है, और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ, आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
0: Thank you.
3: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat, abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक, इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नमस्कार, आकाश।
1: आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। विषय था युवा शक्ति। विशेषज्ञ थे मनसुख मांडविया, युवा मामले और खेल मंत्री। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की सुनना चाहे वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, मधु लकड़ा मताशा और बेबी, बड़े बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन मीना पवन, अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, कोचाई बिद्री से केपी सेठ से सरिता से दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, बेरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार, करसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनुआ गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता, रीता, सरस्वती, आराध्या, अमित, सुमित, अंकित, अभिषेक, विनोद, आशीष, विकी, राजू, राजन, माहिर और शुभम, न्यू कॉलोनी नीमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु और अनीश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म वक्त का ये नगमा, आवाज है महेंद्र कपूर की। और आशा भोसले

अगली पसंद आप सबों की है, खसवा बड़ा बाबू उड़िया साई से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो एवं समस्त परिवार के सदस्य। चांडिल ग्राम हरुड़ी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दिन बंधु। बड़ी बाजार क्षमा करेंगे, बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा। ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, बनमाली, बेशरा, अन्नू, सेतु कुमारी और पूजा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महाली साई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली, शांति महाली। मौलडिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अन्नु, तन्नू, रिश्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, देव प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलसा नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान। आप सभी सुनना चाहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, गायक लगा रहे हैं हेमलता।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत, बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी समीमा खानम निम्मी बिट्टू किरण रोशनी परी मुस्कान नविहा, बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम शांति देवी रोहन कोमल ऋतिक, चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत बासंती भगत मृणाल कांति भगत चांदनी भगत मास्टर आयुष भगत राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका शिवम मौसमी संतोष आनंद, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार, तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर पुष्पा देवी रोहित ठाकुर संगीता देवी लाडो हरी खुशी कुमारी रिया कुमारी अर्पिता कुमारी, आमजोड़ा पोखरिया से मालुका से शिवा गोप प्रेम गोप प्यारी बहन संगीता गोप लिपि गोप और दीपाली गोप। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मुगले आजम का ये गाना, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

इसके साथ ही हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फरमाइश गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, बाबा कुट्टी उफरा पाटन से प्रेम साहू और यमुना साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन की बेटी, इस फिल्म का गाना, आवाज़ें हैं किशोर कुमार की।

0: चुप रहते हैं।
1: अगली फरमाई से बड़ा निमड़ी चाईवासा से तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार और शुभम कुमार की आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हीर रांझा का ये गाना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

अगली फरमाइश है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म महबूबा का ये नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार की हैं।

अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हमराज का ये नगमा, आवाजें महेंद्र कपूर की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
3: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
2: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
3: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
3: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
2: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।

ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ भाटपारा दत्तरे की, थे द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा की। फिल्म था एतवार, गायक कलाकार थे आशा भोसले और भूपेंद्र। और आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। चंदा रेडियो श्रोता संघ, चंदा चौक, अंदराठी, जिला मधुबनी, बिहार से शोभिकांत झा सज्जन, मुखिया जी हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, हुई सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन, मास्टर एस के सज्जन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अंधा कानून, फिल्म का ये गाना। आवाजें आनंद किशोर कुमार की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खना

0: लेना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60

0: नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम

0: रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts Under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they

0: خاطر مختلف اقدامات اور تجویزوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میٹنگ میں رہن سہن میں سہولت اور کاروبار کرنے میں سہولت کو اور زیادہ بہتر بنانے کی خاطر مختلف اصلاحات پر بھی غور کیا گیا۔ ارکان نے بھارت اور دنیا پر مغربی ایشیا محاذرائی کے اثرات کے تعلق سے اپنی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ آج کی اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکاء نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر پیش کیے۔ اقتصادی صلاحکار کونسل ایک آزادانہ ادارہ ہے جو اقتصادی اور متعلقہ معاملات پر بھارت سرکار، خاص طور پر وزیر اعظم کو صلاح دیتا ہے۔ آج کی میٹنگ میں اقتصادی صلاحکار کونسل کے ارکان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے دو پرنسپل سیکرٹریوں ڈاکٹر پی کے مشرا اور شکتی کانت داس نے بھی شرکت کی۔ مرکز نے وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی تیل کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مارکیٹ میں اور زیادہ شفافیت اور یکسانیت آ سکے گی۔ صارفین کے امور کے محکمے نے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروزپور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ آج صبح فیروزپور فاضلکا روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ایک رشتہ دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت، مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ ایک دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो उम्मीदवारों, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी भोपाल असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए गए। कांग्रेस ने मंदसौर की साबिक पार्लिमानी रुकन मीनाक्षी नटराजन को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। तकरीबन 600 मुरब्बा मीटर में फैले इस मरकज का मकसद एक खुशगवार, महफूज और साजगार माहौल फराहम करना है जहां बच्चे सीखें, खेलें, आराम कर सकें और बेहतर नशोनुमा हासिल कर सकें। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी अहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। मगरबी एशिया का तनाजा उस वक्त एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निजाम ने बेशतर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बना दिया जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इत्तलात मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। इन वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई के गुजरगाहों में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
2: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काकामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक केरलम और माहे में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निजाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से यह बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार काउंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुदनी तेल के पैकेट के मैरी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की, आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले

0: 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम पर चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनके समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दे बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आजादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली। उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी को यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता, क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था। तो मैंने जब लिखना शुरू किया और इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ, जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोबल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ। ये बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बहुत मजेदार है। वह ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सचिन रानी बूटू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के कर। उसने कहा यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखो तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे मैंने कहा तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा कहो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दिनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बात कुछ थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर किए, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापने के लिए जाते हुए बोले मैं तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
2: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है, मुझे बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है, तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
2: देखिए, कारण वही है कि मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोग के साथ जो भेदभाव है, वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उस पर कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है, आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में, मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
2: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सकता है, उसको चलिए मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
2: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब एक्टर, लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञे और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सोष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखार रहे हैं। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र।
3: जी।
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो आकाशवाणी ने किया है।
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ

0: मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है, तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया, और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है।
0: जी,
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर, और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी बेहरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें, तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा, लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभ मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कजिनों का कार्यक्रम महफिल। आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, इसके साथ ही हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गाना है फिल्म आ से, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश।

अभी आपने सुना फिल्म बेटी बेटे का ये नगमा, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म दो बदन का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

0: To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmy Gaane channel.
1: अभी आपने सुना फिल्म आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म का गाना आवाज़ थी हेमलता की। और आइए सुनते हैं फिल्म कोरा कागज़ का ये नगमा, क्षमा करेंगे आराधना फिल्म का ये नगमा, आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, इसके साथ ही हमारा आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम

0: एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said, 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
3: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingri Ghata area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said, India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said, India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
4: हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं. हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है. कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. शुभ रात्रि. जय हिंद.